0: हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सुबह के 5:04 हो चुके हैं. थर्सडे का प्यारा दिन आ गया है, 6 अगस्त 2026. वो सुबह का सुनहरा वक्त जब आसमां अभी अभी अपनी चादर बदल रहा होता है, रात की खामोशी दिन की पहली सांस ले रही होती है, और इसी खामोशी में मैं हूँ आपके साथ पूनम. RM2 रेडियो मस्ती पर आप सभी का स्वागत है आप ही के प्रोग्राम राइज एंड शाइन में. इंजॉय कीजिए अपने गाने, और आप बिल्कुल अपने मैसेजेस भेजना मत भूलिएगा मुझे 5499124 पर. ये गाने आप सभी के लिए, आपकी मॉर्निंग शुभ हो.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 13 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस समय कहते हैं ना, कुछ रिश्ते आवाज से बनते हैं और चेहरे से नहीं। ऐसे ही आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, पर आपके मैसेजेस हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें विश्वास देते हैं कि हम जो यहाँ से काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमें प्यार मिलता है आपसे, आपके मैसेजेस जब पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है आप जिस जो आपके लोग हैं जिनको आप रोज़ मिस करते हैं बट बात नहीं कर पाते, पर उनके लिए कोई ना कोई प्यारा सा मैसेज छोड़ जाते हैं, और एहसास उन्हें भी होता है कि वो इंसान मुझे कितना प्यार करता है। तो ये सबसे प्यारी बात है कि जब एक दूसरे का साथ इस तरीके से मिलता है, और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि हाँ यस, ये गाने जो हैं इसको आप इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई ये गाने बहुत ही प्यारे हैं, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हो, मुकेश जी की आवाज़ में हो, लता मंगेशकर की, उषा मंगेशकर की, आशा भोसले जी की। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है सुबह वाली, जो खिलती खिलती हंसाते हंसाते किसी को मोटिवेट करने वाली, तो हमें आप भेज सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने और हमें मैसेज भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:27 हो चुके हैं. जैसे अभी इसमें म्यूजिक आ रहा था गड़गड़ाहट की, गर्जना की, मैं भी चाह रही हूँ कि आकाश में ये वाली आवाज़ें सुन सकें और हमारे यहाँ पर पानी आ सके. पानी की थोड़ी सी तंगी चल रही है, पर क्या करें, ये तो जब आता है तो हम सारे जने कैसे बोलते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है क्या करें, पर अभी हम सबको बारिश चाहिए. तो इन्जॉय कीजिए गानों के साथ में. और अगर जो सुबह सब लोग उठ चुके हैं, क्या बात है, जो इस समय बाहर जा रहे हैं, उठकर काम पर जा रहे हैं, उनको तो बस इतना ही कहना है, क्या बात है, सूरज से पहले जाग गए हैं आप लोग, तो मतलब आप लोगों ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और काम पर जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, अपनी मेहनत को खुद फुलफिल करना चाह रहे हैं. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है. हम भी चाहेंगे कि आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो. काम पर जाइए, इंजॉय कीजिए गानों के साथ में. आपका जो स्ट्रेस है, ऑफिस का प्रेशर है, थोड़ा सा कम हो. घर पे थोड़ा सा पानी वानी के बर्तन भर लिए होंगे सभी ने, मुझे एहसास है, पर कोई बात नहीं, ये गानों जो है ना आपकी थकान को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. बस हम इतना ही कहेंगे, चाय पीजिए आराम से, काम पर निकलिए और रेडी हो रहे हैं तो बस रेडी होइए. ये है आपके लिए प्यारा सा गाना.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 41 मिनट हो चुके हैं और आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफीक की आवाज में तेरी इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। सच बात है, आप सबका जो ये मैसेजेस आते हैं उसका जो असर होता है ना, वो हमारी स्माइल एहसास कराती है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, दिल करता है कि सबके मैसेजेस पढ़ें, पर क्या करें, सारे तो नहीं पढ़ पाते, पर फिर भी जितने पढ़ पाते हैं हम जरूर आपके लिए आपके मैसेजेस कबूतर की जैसे उनके लिए भेज देंगे जहां पे ये मैसेज जाना चाहिए। चलिए जी, इस समय जयशन जी साज हॉस्पिटल से दे रहे हैं और नेक्स्ट सॉन्ग अपने सभी दोस्तों के लिए फरमाइश कर रहे हैं। कह रहे हैं, हम तो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, पर हमारे जो दोस्त हैं टिम्बा, जेबुन, उमरियान, दानो, अंगूठिया, आकाश, श्रवण, रामदेवर एंड मेविन, वो पेशेंट्स के साथ साथ RM2 रेडियो मस्ती को सुनते हैं और इंजॉय करते करते उनका ध्यान रखते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप सबका साथ देना ही बहुत बड़ी बात है। सुया बिहारी जी जुड़ी हुई है साथ में और इंजॉय कर रही है इस प्रोग्राम को। दीपक जी साथ दे रहे हैं और अपनी वेदू जी के लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, क्या बात है। प्रमिला जी साथ दे रही हैं और अपने हस्बैंड रंजीत जी के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि एक लाइफ का बहुत ही प्यारा हिस्सा हो, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, क्या बात है, सो नाइस। साधना जी, मुकेश जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती को, थैंक यू, अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ। ललित जी जो कि साथ दे रहे हैं USA से, आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ ही हैं, बस आप ऐसे यादों में उनके साथ रहिए, जब भी आप पहुँचेंगे अपनी वाइफ के पास हमेशा आपको खुशियाँ मिलेंगी। अब्दुल सायरा बानो जी जुड़े हुए हैं साथ और नसरीन जी को विश कर रहे हैं कि जो भी इस समय फिलिंग स्टेशन में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह काम कर रहे हैं, वो कुआश बस हमेशा अपना ख्याल रखें, क्या बात है। आज विक्की रघुवर जी का बर्थडे है और कविता बर्तन जी जो कि उनकी बहन है, उनको बस इतना कहना चाहती है, बहुत लंबी उम्र हो आपकी, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, मेरी तो यही दुआ है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और हम भी पूरे RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से आपको विश करना चाहेंगे। विक्की जी, आप ये तो नहीं कहेंगे कि एक बड़ों की जैसे तो नहीं मैं बोल सकती, पर इतना जरूर बोलती हूँ, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सुबह आपकी है और रात तक आपके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। आज सुरेश शर्मा साजदा भी साथ दे रहे हैं और अपने परिवार के साथ सभी को विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए अपने गाने, थोड़ी देर में जुड़ पाएंगे आप अपने ही राशि फल के साथ।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
2: सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। नई सुबह, तो खुद पर ज्यादा दबाव नहीं बल्कि थोड़ा सा विश्वास रखिए। आइए देखते हैं आज आपका राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले
3: एरीज मेष राशि,
2: आज ऑफिस या काम की शुरुआत अच्छी रहेगी। जो जिम्मेदारी मिले उसे मुस्कुराकर अपनाइए। बीच बीच में खुद को थोड़ा आराम दीजिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 5।
3: टॉरस वृषभ राशि,
2: आज काम की रफ्तार बनी रहेगी। हर बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चाय या कॉफी ब्रेक आपको तरोताजा कर सकता है। बस अपने काम को फोकस होके कीजिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
3: जेमिनी मिथुन राशि,
2: आज आपकी बातचीत काम आसान बना सकती है। टीम के साथ मिलकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मुस्कान बनाए रखिए, तनाव दूर रहेगा। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
3: कैंसर कर्क राशि,
2: काम और परिवार के बीच में अच्छा संतुलन बना रहेगा। जल्दबाजी से बचिए, समय आपका साथ देगा। शाम अपने लोगों के साथ बिताइए। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि,
2: आज आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दिन खत्म होने पर खुद को आराम देना मत भूलिएगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि,
2: आज अपनी पहले से ही लिस्ट बना लीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है। एक एक करके अपने काम पर संतोष कीजिए, टिक करते जाइए। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और अपने काम को आप देखेंगे कि आपने रात तक सभी काम पूरे कर लिए हैं। तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, बस उस पर टिक करते जाइए, अच्छा होगा। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 6।
3: लिब्रा तुला राशि,
2: आज काम के साथ रिश्तों पर भी ध्यान दीजिए। किसी सहकर्मी की मदद करके आपके साथ आपको साथ उनका मिल सकता है। शाम को थोड़ा सा संगीत सुनिए, मन हल्का रहेगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
2: आज मुश्किल काम पहले निपटा लीजिए, उसके बाद पूरा दिन हल्का महसूस होगा। अपने लिए थोड़ा शांत समय भी निकालिए। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 9।
3: सजिटेरियस धनु राशि,
2: आज नई जिम्मेदारियों को चुनौती नहीं बल्कि मौका समझिए। आपकी ऊर्जा आपको अलग जगह लेके जाना चाहती है। आपको डायरेक्शन अलग मिलने वाली है। शाम को थोड़ा सा टहलना होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 4।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
2: आज मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। बिना रुके नहीं, सही गति से आगे बढ़िए। आराम भी आपकी सफलता का एक हिस्सा है, तो काम पर फोकस कीजिए और आप आराम भी साथ साथ लीजिए। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
3: एक्वेरियस कुंभ राशि,

0: आज नए विचार आपके काम आएंगे, कुछ अलग करने का मौका मिल सकता है खुद का। ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा अपने आप को थकाइए मत। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज अपने दिन की शुरुआत शांति से कीजिए। काम समय पर पूरा होने के योग हैं। शाम को परिवार का साथ मिलेगा। आपने जो भी काम अभी तक डिसाइड किए हैं आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर हो सकता है तो पहले ही एक हफ्ते की पहले ही लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। तो ये और आपका बनेगा लकी कलर पीच कलर, लकी नंबर है 2। तो दोस्तों काम जरूरी है लेकिन अपने लिए कुछ पल निकालना भी जरूरी है। यह है RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से, मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
2: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musti. Musti.
4: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे-धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

0: You're listening to RM2, a Radio Masti. RM2, Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
6: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. सिडनी पिया ने कहा कि वे लेबर पार्टी के भीतर अपनी आवाज़ बुलंद करने और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अलायंस डू शांजमों के साथ बने हुए हैं. उनका कहना है कि देश की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और बढ़ते कर्ज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने सरकार के सकारात्मक कदमों को स्वीकार करते हुए आर्थिक विकास, अधिक राजस्व सृजन और सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया. नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष का विषय जो कारगर है उसे और मजबूत करें रखा गया है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व सहयोग प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है. कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है. आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक

0: प्रक्रियाएं अभी पूरी करने की जानी बाकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पोजीशन पेपर के अनुसार मॉरिशस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं। और विदेश में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नौवहन मार्ग पर ओमान के साथ समझौता कर लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण दक्षिण पूर्व पर विकसित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य और अस्थिर हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व तथा ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होती रहेगी, कभी कभी सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18, अन्य इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:37 पर और आज शाम 5:54 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक क्रिया क्या दीजिए। नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:07 हो चुके हैं। कहते हैं जिंदगी सुबह से नहीं, सुबह की सोच से शुरू होती है। उम्मीद है आज की सुबह ने आपको सोचने का एक नया नज़रिया दिया हो। हम चल रहे हैं आप ही के साथ और बढ़ रहे हैं थोड़ी देर में आपके मैसेजेस के साथ में। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। तब तक प्यारे प्यारे गाने आप सभी के लिए हैं। चाय पी रहे हैं तो चाय पीजिए, कहीं बाहर जा रहे हैं चाहे ब्रेड लेने जा रहे हैं या बस रास्ते में कोई थोड़ी सी वॉक करना चाह रहे हैं तो जी। बहुत प्यारा बाहर का मौसम हो रहा है, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो दिल भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा होता है। अगर आपको कोई टैबलेट दी हुई है डॉक्टर ने कि आपको खाना है चाय वगैरह पीने से पहले या बाद में, तो उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इंजॉय कीजिए गाने और साथ में अपने काम छोटे छोटे करते रहिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

नकबंदी

0: नक्का मक्का नक्का नक्का बंदी हैया हो मक्का मक्का नक्का नक्का बंदी नक्का बंदी नक्का बंदी हैया हो नक्का बंदी
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
3: 6:19 हो चुके हैं और दिल करता है बस आप लोगों के मैसेज पढ़ती रहूं. इतने प्यारे भरे मैसेजेस आप भेजते हैं, गुलाब की तरह लगते हैं. चलिए पहला, सबसे पहला गुलाब तोड़ के देखते हैं कि किसने क्या भेजा. हम भी जिन्होंने मैसेज भेजा है, बस उन्होंने कहा है हमारा दिल रख देना उनके लिए. कहते हैं कुशन कंजुल जी का आज बर्थडे है और मम्मी और उनकी वाइफ और उनके सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उन्हें विश कर रहे हैं और उनको बस इतना ही कह रहे हैं तुम्हारी लंबी उम्र हो, खुश रहो और अपने वाइफ के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, बच्चों को प्यार दो. क्या बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज है. और मैम हम भी चाहेंगे कि आपका जो प्यार है ऐसे ही अपने बच्चों में जाता रहे, बढ़ता रहे. यही तो माँ बाप का फर्ज भी होता है और यही उनकी दिल की दुआ भी होती है. दरन श्वेता रविश प्रिशा लोवेशा पादू फैमिली साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं. उन्हें लग रहा है कि जैसे कि मॉर्निंग जब शुरू होती है तो जब रेडियो मस्ती चलता है तब ऐसा लगता है कि भाई सारे जो फूल हैं हमारी बगिया में बिछ गए. क्या बात है, थैंक यू सो मच. किशन राज रघुनाथ सुरीनाम से, किशन रघुनाथ जी साथ दे रहे हैं सुरीनाम से और अपनी वाइफ माला और टू डॉटर्स जिया एंड रिया दोनों को बस इतना कह रहे हैं मेरे दिल की धड़कन हो तुम, मैं क्या करूं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, इसलिए सुबह सुबह रेडियो मस्ती में चला जाता हूं सिर्फ एहसास दिलाने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं. क्या बात है, ये भी बहुत सच बात है कि फादर का कुछ प्यार अलग ही होता है, अनोखा होता है अपनी डॉटर्स के लिए. और आप इतना प्यार देते हैं तो डेफिनेटली आप उनका ख्याल रखते होंगे और अगर वो

0: ख्याल रखते हुए, तो जब आप थोड़े से उम्र में आएंगे तब देखना आपको बेटियों से कितना प्यार मिलेगा। हमेशा खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। इस समय हमारे साथ हैं इंदिरा जी, रेशमा, विमल, अंजू, कृष्णा, केशव, नील, मायसा साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और कह रहे हैं राइज एंड शाइन चलता है, हमारी मॉर्निंग शाइन शाइन वाली हो जाती है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। रेखा ननकू जी भी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। हम तो कहते हैं कि आप सबके मैसेजेस दिल करता है पढ़ें, पर इतने सारे मैसेजेस आते हैं सब नहीं पढ़ पाते, बट जो भी पढ़ते हैं हम बहुत दिल से पढ़ते हैं, चश्मा लगा के पढ़ते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर में जुट पाएंगे आप विस्तार से समाचारों के साथ।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

6 बजे हैं। गुरुवार 6 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सिडनी पिया ने कहा कि वे लेबर पार्टी के भीतर अपनी आवाज बुलंद करने और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अलायंस डू शांजमों के साथ बने हुए हैं। उनका कहना है कि देश की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और बढ़ते कर्ज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार के सकारात्मक कदमों को स्वीकार करते हुए आर्थिक विकास, अधिक राजस्व सृजन और सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया। नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व सहयोग प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। आवास एवं भूमि मंत्री ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पोजीशन पेपर के अनुसार मॉरिशस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह

0: पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं। और विदेश में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नौवहन मार्ग पर ओमान के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि अमरीकी नाकाबंदी के कारण ये सुरक्षित आवागमन की गारंटी नहीं देता। सिडनी पियर लेबर पार्टी के भीतर अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठाने और अपने विश्वासों की रक्षा के लिए अलियंस डू शांजमां के साथ बने हुए हैं। उन्होंने रोज हिल में अपनी बर्खास्तगी के कुछ दिनों बाद एक प्रेस सम्मेलन के दौरान ये बात कही। सिडनी पियर का मानना है कि सार्वजनिक वित्त की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और देश कर्ज के बढ़ते स्तर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हालांकि पूर्व जूनियर मिनिस्टर का कहना है कि सरकार की कमियों के साथ साथ उसके सकारात्मक उपायों को भी पहचानना जरूरी है। उनके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मुकाबले कर्ज में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक जोखिम है। उन्होंने अधिक धन पैदा करने, विकास का समर्थन करने और राज्य के वित्त प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिडनी पियर के लिए देश की आर्थिक स्थिति आश्वस्त करने के से कोसों दूर है। करुणा लालू।
1: रोज हिल में अपने दफ्तर में सिडनी पियर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बयान दिया। पिछले शुक्रवार को उन्हें पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया गया था। कारण, उन्होंने फाइनेंस बिल की धारा 12 जो पेंशन सुधार से संबंधित है के विरुद्ध मतदान किया। इस बुधवार को मीडिया से बातचीत में सिडनी पियर ने बताया कि वो सरकारी बहुपक्ष में बैकबेंचर के रूप में ही संसद में बने रहेंगे।
2: Minoritaire là au sein de la majorité. Donc, si on connaît la place qui m'oblige dans l'Assemblée, donc mon point de backbencher du gouvernement, du Parti travailliste, pas pour être l'opposition du gouvernement.
1: Média के अन्य सवालों के जवाब में चुनाव क्षेत्र नंबर 19 स्टेनली रोज हिल के सांसद ने बताया कि फाइनेंस बिल पर मतदान से पहले या उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी बात की जो उनके पद से हटाए जाने का मुख्य कारण बना।
2: Donc nous dans la constitution mentionné que cabinet ministres zot bizan al avec la solidarité collective parce qu'ils faisaient partie du cabinet du nouveau ministre pas faire partie du cabinet. Connais ce qui n'est arrivé vendredi là, c'était un précédent mais intéressant dans la vie démocratique d'un pays. Basel là nous bizan pousse le débat encore plus loin et ce qui nous amène du nouveau ministre dans le cabinet.
1: सिडनी पियर ने आगे कहा कि उनके सभी निर्णय सबसे पहले जनता के हित को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। उनके लिए यदि भविष्य में उन्हें लेबर पार्टी छोड़नी पड़ती है तो वो विपक्ष में एक निर्दलीय सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
0: सांसद वेरोनिक लेगोविन को आज गुरुवार को आदसू के समक्ष पेश होना है। उनकी ये पूछताछ जो मूल रूप से कल निर्धारित थी आज सुबह के लिए स्थगित कर दी गई थी। वेरोनिक लेगोविन से रेनन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजा तस्करी के कथित मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जानी है। इस मामले के कारण उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाजी की गिरफ्तारी हुई है। सांसद वेरोनिक लेगोविन की एक SUV गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर उसकी जांच की है। बताया जा रहा है कि उसमें गांजे के निशान मिले हैं। पुलिस जांच के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा इस जोड़े की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। बच्चे का पोषण करना, उसकी रक्षा करना और पहले दिन से उसका साथ देना। नवजात शिशु के स्वास्थ्य में स्तनपान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए समर्पित विश्व सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष चुना गया विषय जो चीज़ें कारगर हैं उन्हें मजबूत करने का आह्वान करता है। ये स्तनपान के लाभों के साथ साथ माताओं को दी जाने वाली जानकारी और उनके मार्गदर्शन द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर एक विचार विमर्श है। आशीबाचू आस्था गुबिन।
3: जन्म के बाद माँ का पहला दूध नवजात शिशु के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाने

0: Me madad karti hai.
1: Les 1000 premiers jours, c'est ce qu'ils ont fait entre le moment de la conception jusqu'à ce qu'ils enfants la gagnent 2 ans. Ça pour permettre tout gagner un capital santé bénéfique pour le futur. Il y a intervenir l'eau ou développement ou l'intelligence, faire résistance à bonne infection ou immunité.
0: डॉक्टर राधिका जगत सिंह बृहस्पतिया बताती हैं कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन उसके अच्छे स्वास्थ्य और सही विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
1: Capable qui bat le bébé, pas pour autre trop boire. Mais maintenant, on a beaucoup de facilité qui nous est non. Je suis déjà capable de téléphoner du monde qui est déjà allaité. Je suis déjà capable de téléphoner ma breastfeeding counselor, ma sage-femme, dans votre entourage. Je suis déjà causé entre eux et aider.
0: लेकिन हर माँ के लिए स्तनपान की शुरुआत आसान नहीं होती। यही कारण है कि इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान माताओं को सही जानकारी, सलाह और सहयोग देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि वे शुरुआती दिनों में आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकें।
1: C'est pas juste la santé physique, la santé mentale aussi très importante. Le support de la famille est indispensable.
0: कई बार नवजात शिशु को स्तनपान करने में दिक्कत होती है, इससे माता पिता चिंतित हो सकते हैं, लेकिन सही सलाह और मदद से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्तनपान केवल बच्चे के पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच मजबूत संबंध बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके फायदे बच्चे के जीवन में लंबे समय तक बने रहते हैं।
2: कई मॉरिशन परिवारों के लिए सामाजिक आवास प्राप्त करना सिर्फ एक छत मिलने से कहीं अधिक है। ये बेहतर स्थिति में रहने और अधिक स्थिर भविष्य के निर्माण की संभावना है। आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने देश भर में घरों के आवंटन और वितरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। कई घर पहले ही सौंपे जा चुके हैं, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले अभी कुछ चरणों को पूरा किया जाना बाकी है। अद्रियन वालिया, आस्था गोबिन।
0: हजारों परिवार अब भी सरकारी घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार NSLD के तहत 12 परियोजनाओं में 2352 घर बनाए गए हैं। 31 जुलाई तक 1209 परिवारों ने अपना घर स्वीकार कर लिया था। इनमें से 383 परिवारों ने जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि 292 परिवारों को अपने घर की चाबियां मिल चुकी हैं। वहीं NHDC की 5 परियोजनाओं में 185 घर शामिल हैं। इनमें 159 परिवारों ने अपना घर स्वीकार किया है। इनमें से 103 परिवार या तो कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं या उन्हें घर की चाबियां मिल चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि घर बन जाने के बाद भी उसे तुरंत नहीं दिया जा सकता। पहले सड़क, नालियां, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाओं का काम पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक से लोन और रेंट टू ओन योजना से जुड़ी बाकी प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। उधर कौइचे, गुडलैंड, लेस्पेरेंस, त्रिबुशे, ओयेटा, रिश्ते और कोदो में बनने वाले 1570 और घरों के लिए परिवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है।
2: मॉरिशस का कानून समलैंगिक विवाह यानी समान लिंग वाले व्यक्तियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गत 22 जुलाई को प्रकाशित पोजीशन पेपर के निष्कर्षों में से एक है। दस्तावेज में ये भी अनुमान लगाया गया है कि विधायी या प्रशासनिक कदमों के अभाव में जो व्यक्ति अपने विवाह के अधिकार को मान्यता न दिए जाने के कारण खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, वे मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, विशेष रूप से संविधान की धारा 17 के तहत संवैधानिक याचिका के माध्यम से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल के अनुसार ये पोजीशन पेपर प्राप्त शिकायतों के बाद तैयार किया गया है। उनको सुनते हैं जिनसे बात की राजमीना सीतामणि ने।
1: Il est important pour nous, il a ce mal de développement là, il est jugement important de la Cour suprême. À partir de là, bien entendu.
0: समाज में ऐसे बदलाव बेहद जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कानून को सही तरीके से समझना होगा। अगर किसी भी संस्था को इस कानून को लेकर संदेह या हिचकिचाहट है, तो अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से संपर्क करना चाहिए। हमने अपने विश्लेषणों में यही पाया है। विशेषकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए जहाँ तक किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी यौन रुझान का सवाल है।
2: OUT मॉरिस की निदेशिका सौंद्रीन जूनियर इस पोजीशन पेपर का स्वागत करती हैं। उन्होंने इसे कठोर, संतुलित और संविधान पर आधारित दस्तावेज करार दिया है।
3: Il y a pour le bon éclaircissement

0: qui est important, l'ambiguïté juridique qui existait, il constituait vraiment une base solide.
1: इस फैसले ने पहले से मौजूद कानूनी उलझनों को स्पष्ट किया है. ये कानून आगे के कदमों के लिए मजबूत नींव स्थापित करता है. मॉरिशस का अगला चरण होगा अधिकारियों का समर्थन करना ताकि सही फैसले लिए जा सके. हम अपनी विशेषज्ञता बांटेंगे, अपने शोध के नतीजे सामने रखेंगे जो मैदानी स्तर पर किए गए हैं. हम दबाव डालना नहीं चाहते, पर हमारी भूमिका है सही जानकारियां प्रदान करना और गे लेस्बियन और ट्रांस लोगों की वास्तविकताएं बयां करने के लिए हम भूमिका निभा रहे हैं.
0: बन टेमोइनेज aussi réalité ban couple lesbienne gay et trans dans Maurice.
2: Remy Feuillet कल NBC आए हुए थे. ग्रैंड सीट कार्यक्रम के अतिथि के रूप में उन्होंने अपने जूडो खिलाड़ी के सफर को मुख्य रूप से याद किया. उनके लिए राष्ट्रमंडल खेल केवल एक पड़ाव है क्योंकि वे अब 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफिकेशंस की तैयारी कर रही हैं. उनको सुनते हैं.
3: Remy Feuillet, est-ce que vous réalisez vraiment ce qui est un récit archive là-bas dans Glasgow? Ça fait 28 ans quand même que Maurice Patire ici décroche l'or au Pévin HP dans le panthéon du sport mauricien.
4: Et mon réalisé, comme on finit en compétition, parce qu'avant, on ne connaît pas qui est Richard, dernier du monde qui gagne l'or dans le jeu du Commonwealth. On ne connaît pas qui, ça fait 28 ans que Maurice Pan gagne l'or. Et ben, comme on finit à la finale là, on comprend, ben, on dit à moi que mon récit gagne l'or pour le judo, première fois pour le judo. Et deuxième fois en tout pour Maurice.
3: En 2022, à Birmingham, Unchpeyadji en finale. Et là, est-ce qu'il nous cause d'une douce revanche ou est-ce qu'il c'est consécration de 4 ans de travail?
4: Non, pour moi, il n'est pas une revanche. Qu'à dire, il y a une consécration.
2: विदेश की खबरों में ईरान का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से नौवहन के एक मार्ग पर ओमान के साथ एक समझौता कर लिया है. हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि ओमान के साथ समझौता स्ट्रेट के माध्यम से सुरक्षित नौवहन की गारंटी नहीं देगा और तर्क दिया कि ईरान के बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी के कारण सुरक्षा प्रभावित बनी हुई है. अमरीका और ओमान ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जानी इन्फेंटिनो ने प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने की विवादास्पद योजनाओं में की गई अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली है. लेकिन मोरक्को में हुए एक बैठक में शीर्ष अधिकारियों के समर्थन मिलने के बाद वो फीफा अध्यक्ष बने रहेंगे. और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल. मस्करिंस के दक्षिण पूर्व पर विकसित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य और अस्थिर हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व तथा ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होती रहेगी. कभी कभी सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है. ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी. आज सुबह दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर.

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादरकुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 7:45 हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। पिचिपा के रोड मोंटाइन ब्लांश में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद कतुना, जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनके बेटे

शिव कतुना के घर पिचिपा के रोड मोताय ब्लॉन्च से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाए जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30। टैगोर रोड एनिस्फ्लोहा में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री राजनाथ बिमल, जो हरि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश बिमल के घर टैगोर रोड एनिस्फ्लोहा से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। E5 एलियट स्ट्रीट सिटी लुआजो फ्लोरियाल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी इंदसिया, पैदायशी नाम राम जतन और जो चंद्रानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर E5 एलियट स्ट्रीट सिटी लुआजो फ्लोरियाल से उठाकर आली ब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। La Chapelle और डॉन एडियन सन्स रोड बुबासे में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री चमिल चंद्रन उदन, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने 12 बजे ला शपेल और डॉन एडियन सन्स रोड बुबासन से उठाकर पॉम्पलमुस की शमशान के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे at 12:45. Number 2 Saint-Esprit-Lane, Avenue Saint-Vierge-Ilnaz, 4 Bonmé, 77 साल की 77 years old की श्रीमती अमरावती मानिक, पैदाइशी नाम राका और जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर नंबर 2 Saint-Esprit-Lane, Avenue Saint-Vierge-Ilnaz, 4 Bon से उठाकर बेतो 4 Bon की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30। तुलसीदास लेन कौंची में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश गोपी, जो तुत नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी गोपी के घर तुलसीदास लेन कौंची से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। रिशलियो ब्रांच रोड पिचित रिविया में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री लगन भुजा, जो प्रेमलाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर रिशलियो ब्रांच रोड पिचित रिविया से उठाकर सेंट जॉर्ज पिचित रिविया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। अलीमोंग पोस्ट फ्लैक में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती बंधु, पैदायशी नाम बंधन और जो रजनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे अविनाश बंधु के घर अलीमोंग पोस्ट फ्लैक से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। फ्लैट C13 NHDC कैप मालोरे में 33 साल की 33 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृति भुनमुन, पैदायशी नाम मोहन और जो पूजा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शुक्रवार को दिन के 3 बजे उनकी मां प्रतिमा मोहन के घर फ्लैट C13 NHDC कप मालोहो से उठाकर पॉइंट ऑफ बीमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। मोसेलमो ग्रीग्री सुयाक में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के जनाब उस्मान मुआबी, जो फायज नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके भाई मोहम्मद शकील इब्राहिम मुराबी के घर मोसेलमो ग्रीग्री सुयाक से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। ला शपेल ऑडेंट मुरा पिसित रिविया में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कालामती बाई तानुजी, पैदायशी नाम भाया और जो काला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे राधे रोड दागुचे रहती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे लाशा पेलोदोंत मुखापित से त्रिविया से उठाकर सेकुंस्टांस सेंट पिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमो रामफुल बामोंग प्लैन दी पापाई में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्री हरि शंकर रघु, जो विजय रघु नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले मापू के कृषि मंत्रालय में काम करते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 उनके घर मोसेलमो रामफुल बामोंग प्लैन दी पापाई से उठाकर कारो मोर्टेल एस्पेरेंस पीतों के शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30। गांधी रोड एनिस्फ्लोरों में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवरा

रानी बिसराम पैदायशी नाम लक्ष्मण और जो देविका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री सुरेश बिसराम के घर गांधी रोड अनिस फ्लोहों से उठाकर बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। फुगवा रोड लिमाहियान में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी महेश्वरी सुकन पैदायशी नाम गोबिन और जो नलिनी नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति सुबिराज सुकन के घर फुगवा रोड लिमाहियान से उठाकर इलाके की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

पूनम का साथ बस यहीं तक, पर सुबह अभी बाकी है। आगे सुबह वेदिता के नाम जो लेकर आ रही हैं मॉर्निंग बीट गिफ्ट वाउचर्स और ढेर सारा प्यार और बहुत प्यारे प्यारे गाने। बस कुछ ही देर में मेरी तरफ से आप सबको प्यार, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिएगा।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: retour aux Côtes Winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement, le Nescafé Gold Cappuccino ou Mixer non sucré de 105 grammes à 167,95 € et du samedi 1er août au jeudi 6 août, les flocons d'avoine Master White de 500 grammes à 49,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
1: On est tous winners.
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा, अपन महीना के मौसवालिते सकबा चुकाए, आप तोहर अप्लिकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: Sikkim Group, a lifetime commitment.
4: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vignes plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
5: RM2
6: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: खुल्लम खुल्ला प्याम करता था, प्यार तो कर लिया आपने। चलो थर्सडे 6 अगस्त वेदिता का साथ है और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती पर। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो मॉर्निंग है इसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही होगी और इसी के साथ अभी समय भी आ गया है कि हम आपके लिए लेकर आए गेम। जी हाँ, मॉर्निंग में गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है ना, और आप लोगों को तो इंतज़ार भी रहता है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है आपको इंतज़ार रहता है कि कब हम आपके लिए गेम लेकर आएंगे, कब आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो जीतने वाली खुशी होती है ना, ये अलग ही होता है। स्पेशली आपके लिए जब हम ये गेम लेकर आते हैं, कितने सारे लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब सवाल करेगी, कब सवाल करेगी। चलो कोई नहीं, सवाल कर ही लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग में सबसे पहला सवाल है, हम खेल रहे हैं विनर्स के साथ। ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव इन द राइट आंसर ऑन 5491294 अंटिल 6 अगस्त। व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ स्मूथ मार्गरिट पपी टॉयलेट? ओके, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ स्मूथ मार्गरिट पपी टॉयलेट टाइम्स 10, यानी कि उसमें जो 10 पैकेट होते हैं ना, आपको मुझे बताना है कि अंटिल 6 अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ स्मूथ मार्गरिट पपी टॉयलेट टाइम्स 10। एंड साथ में यू हैव दिस ऑफर, you receive one packet of smooth marguerite toilet paper, 4-ply times 2 rouleau gratuit. होता है, आता है उसमें, फ्री में मिलता है। तो आपको मुझे बताना है सही जवाब 5491294 पर, पूरे नाम और पते के साथ।

0: अजी हमारा रेडियो मस्ती है, यहाँ पर भी तो आपका आना जाना लगा रहता है और हम तो चाहते ही हैं कि आप हर टाइम जैसे आपको थोड़ा टाइम मिले हमारे साथ स्पेंड करें।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो यहाँ पर विनेश की तरफ से हमारा गेम चल रहा है और हम आपको बता रहे थे ना कि आपको यहाँ पर मिल सकता है जितने पर 500 रुपीस का एक वाउचर और ये वाउचर पोस्ट कर दिया जाएगा, डेफिनेटली पोस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन विनर कौन है हमारा सवाल, अंटिल 6 ऑफ अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस इन द प्रमोशनल प्राइस ऑफ स्मूथ मार्गरेट पापी टॉयलेट टाइम्स 10 एंड यू कैन रिसीव वन पैकेट ऑफ स्मूथ मार्गरेट पापी टॉयलेट 4-ply टाइम्स 2 रूलो घाचवी। और यहाँ पर हमने सवाल किया था, सही जवाब हमें मिल चुका है। द राइट आंसर नॉर्मल प्राइस इज 158 सेंट्स एंड प्रमोशनल प्राइस है 106 रुपीज 95 सेंट्स। और यहाँ पर हमें सही जवाब देकर विनर बने हैं कौन, ये है संगीता राम जो रहती हैं कास्टेल से। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपको विनेश की तरफ से 500 रुपीस का वाउचर मिल रहा है और हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे गाने गुनगुनाते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। जिन लोगों की जीत नहीं हुई है, हम सेकेंड आवर में और भी गेम्स लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 7:25 हुए हैं. यू आर लिस्टिंग टू मॉर्निंग बीट विनीता के साथ. यस, गाना आपने सुना, मूड आपका बन गया थोड़ा सा स्लो सही, लेकिन बना तो सही. अभी थोड़े आगे चल के थोड़ा धमाल करेंगे, स्पेशली जब आप ड्राइव करेंगे. अभी क्या करना है ना कि आपके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जान पहचान में, आपको पता है उनका बर्थडे है एंड आप उनको सरप्राइज करना चाहते हो, अच्छा लगता है ना, फोन करके हम गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरी आवाज पे मत जाओ, हम किसी और से गवा लेंगे. नीतू है ना, नीतू गालेगी. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हम सरप्राइज करने वाले हैं और लूडो हाइपर मार्केट की तरफ से हम रोज़ किसी ना किसी को सरप्राइज करते हैं. ये बात अलग है कि मैं सरप्राइज करने जाती हूँ और वो मुझे शौक देते हैं. तो अगर आपके आसपास अगर आपको लगता है कोई है, आपके याद में कोई है, उनका बर्थडे है, तो प्लीज़ उनका नाम और फ़ोन नंबर, उनका नाम आपका नहीं, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर प्लीज़ सेंड मी ऑन 5499 1294.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एंड यस मॉर्निंग में अब उनसे मिलने का टाइम आ गया है जिनका आज स्पेशल डे है. चलिए इनसे मिलते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: हाय, दिस इज रजनीश.
3: यस
2: रजनीश, आपको पता है आपसे कौन बात कर रहा है?
3: नो.
2: ओके, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें सिंगर्स की जरूरत है, तो किसी ने आपका नाम भेजा है. हाँ जी, आप गाना
3: कौन?
2: मैंने सुना है कि आप गाना गाते हैं.
3: नहीं
4: नहीं, no longer being recorded.
2: नहीं, मुझे किसी ने कहा है कि आप गाना गाते हैं, इसीलिए उन्होंने आपका नाम भेजा है.
3: कौन भेजा मेरा नाम?
2: पता नहीं, अनुप अनुप ने भेजा है आपका नाम.
3: अनुप?
2: हाँ, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर सिंगिंग का है या तो फिर एक्टिंग का है. आप अमिताभ बच्चन को वो कर सकते हो, वो कॉपी कर सकते हो, जैसे वो कहते हैं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह. आप कह सकते हो?
3: नहीं नहीं.
2: ट्राई करो, ट्राई करो, बोलो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं.
3: रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं,
2: नाम है शहनशाह.
3: नाम है शहनशाह.
2: और आपको पता है, रिश्ते में हम आपकी नानी लगते हैं और हमारा नाम है विदिता.

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती.
1: चलिए जी, रेडियो मस्ती की पूरी टीम आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. रजनीश, और ये आपके जो बड़े जीजा जी हैं अनूप, उन्होंने कहा था आपको सरप्राइज करने के लिए.

0: एंड मैं वही सोच रही थी कि आज मुझे झटका लगेगा कि आज किसी को सरप्राइज कर पाऊंगी. सो आई एम वेरी हैप्पी आई कुड डू इट टुडे. सो रजनीश हैप्पी बर्थडे. रेडियो मस्ती की पूरी टीम की तरफ से आपको लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है विच यू हैव टू कम एंड कलेक्ट एट दी MBC अपने ID कार्ड के साथ, आज नहीं तो कल. और ये होगा सुबह 9 बजे से सपहर के 3:30 बजे के बीच. ओके, यू हैव टू कम विद योर ID कार्ड. यू हैव टू डेज, टुडे एंड टुमारो. सो रजनीश, काम पर हो, कहाँ पे हो, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी मैं बिस्तर में हूँ.
0: ओह माय गॉड, यहाँ की आज आराम. सो आपका स्पेशल डे है. आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच, बाय. वैसे रिश्ते में आपको पता है हम आपके क्या लगते हैं ना?
1: नानी.
0: यस.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए जी, अरविंद कब से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलने का टाइम हो गया है। जानते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आजकल क्या चल रहा है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ खेलों के साथ। राष्ट्रमंडल खेलों के हमारे गोल्डन बॉय रेमी फेये का कल शानदार स्वागत किया गया। ससयू सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जश्न का माहौल था। प्रेस वालों को रेमी फेये ने बताया कि उसे खुशी है कि वो 28 साल बाद मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीत पाया। पिछली बार सिल्वर मेडल से वो निराश हुआ था, पर इस बार भले ही कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा था, पर वो फुल फिट था और बहुत लगन परिश्रम से ट्रेनिंग कर

0: के फल गोल्डन बनाया। रेमी फेये ने मॉरिशस के खेल इतिहास का एक नया पन्ना खोला, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। यूईएफए चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के मैच कल खेले गए। एजीएफ ने 2-1 से साबा टीम को हराया। फेनेराबाचे की जीत हुई 2-0 से स्टूम क्रांस के खिलाफ। यूईएफए यूरोपा लीग में फेरेनबारोस की जीत 1-0 से गोनिक जाब्रे टीम के खिलाफ। फिर कॉन्फ्रेंस लीग में ब्रांस 0 अपोलो 1, पनाथिनाइकोस 1, सीएसके सोफिया 1। आर्सेनल की हार हुई फ्रेंडली मैच में 3-1 से रियल बेटिस के खिलाफ। कई फर्स्ट टीम खिलाड़ी अभी तक छुट्टी में हैं, पर मैनेजर माइकल आर्टेटा इस बार निराश हुआ। मालो का 3 पेरिस सेंट जर्मेन 0 और एसी मिलान इंटर मिलान के बीच मैच ड्रॉ 1-1। अन्य फ्रेंडली मैचों में कादिज, विलारियल, मार्सेई, टोरिनो, लाजियो, ब्रेस्ट, नापोली, टूलूज, रियल वालादोलिद, सेल्टा वीगो इन सभी टीमों की जीत हुई। ओसबर्ग ने 15-0 से श्वास टीम को पछाड़ा। चेल्सी का खिलाड़ी मिकाइलो मुद्रिच 20 महीने बाद मैदान में उतरा। यूक्रेन का मुद्रिच डोपिंग सस्पेंशन पूरा करके वापस आया। अफसोस, उसकी वापसी पर चेल्सी की हार हुई 1-0 से यूवेंटुस के खिलाफ। डैनी वेलबेक ने भी चेल्सी के साथ पहला मैच खेला। निकोलास जैक्सन, जो लोन पर बायर्न म्यूनिख में था, उसकी भी वापसी हुई। चेल्सी इस सीजन यूरोप में नहीं खेलेगा, पर नए कोच जावी अलोंसो का स्क्वाड लदा हुआ है, भरा हुआ है नए और पुराने खिलाड़ियों के साथ। मैनचेस्टर सिटी के लिए जेरेमी मोंगा खेल पाया। 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सिटी ने मोंगा को लेस्टर से खरीदा चुपचाप। 17 साल का है, अच्छा परफॉर्मर रहा उसका। सिटी ने फ्रेंडली मैच में के लीग 11 को 3-1 से हराया। रायन एट नूरी का गोल, रेजर्स और मुबामा का 1-1 गोल रहा मैनचेस्टर सिटी के लिए। फीफा की इमरजेंसी क्राइसिस मीटिंग आपातकालीन बैठक में अध्यक्ष यानी इन्फांटिनो ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर इन्फांटिनो पर उंगलियां उठ रही थी। फिर भी फीफा के सीनियर एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट बरकरार है और इन्फांटिनो प्रेसिडेंट पद पर रहेगा। न्यूकासल यूनाइटेड का नया बॉस बना मैथियास जेजल। एडी हाउ के जाने के बाद द मैगपाइज में आ रहा है नया कोच। जर्मनी का मैथियास जेजल पहली बार के लिए प्रीमियर लीग में आ रहा है। इससे पहले वो सऊदी प्रो लीग टीम अल अली और ऑस्ट्रिया की रेडबुल साल्ज़बर्ग में काम कर चुका है। न्यूकासल यूनाइटेड में एडी हाउ का स्थान लेना आसान नहीं होगा। ऊपर से टोनाली और गोर्डन चले गए, कप्तान ब्रूनो गुमारेस भी जाने वाला है आर्सेनल में। एवर्टन ने आर्सेनल से मिडफील्डर नोगार्ड को साइन किया। क्रिश्चियन नोगार्ड के लिए 7 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने पड़े। दी टॉफीज ने मिडल्सब्रो से डिफेंडर हेडन हैफने को भी साइन किया। चेल्सी से टैरिक जॉर्ज भी आ रहा है। आइवरी कोस्ट के जियो मांडे के लिए डायमंड का दाम, रियल मैड्रिड 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर यान जियो मांडे को साइन करने जा रहा है। आरबी लाइप्ज़िग के साथ मंजूरी हो गई है। इधर लिवरपूल पेरिस सेंट जर्मेन में डबल रेड मारना चाहता है। बाकोला के अलावा सेनेगल का विंगर इब्राहिम एम्बाये भी लिवरपूल की नजर में है। रियल मैड्रिड का डिफेंडर राउल असेंसियो भी लिवरपूल का टारगेट है। रोड्री को खरीदने के लिए रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 टारगेट चुआमेनी और कमाविंगा को बेच सकता है। प्रीमियर लीग में प्रमोट हुई हल सिटी टीम ने क्लब रिकॉर्ड 20 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ग्रीस के गोलकीपर कोस्तांतिनोस ज़ोलाकिस को साइन किया ओलंपियाकोस से। इधर के वर्डे का हीरो गोलकीपर वोजीना अब चिली की चैंपियन टीम कोलो कोलो में खेलेगा। वर्ल्ड कप में उसके टॉप परफॉर्मेंस के बाद उसे साइन किया गया। उसका असली नाम जोजिमा योजे एवोरा अध्यास है, पर वो चाहता था कि उसके शर्त में वोजीना नाम हो। इसके लिए चिली फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी मंजूरी दे दी है, स्पेशल डेरोगेशन। और वॉलीबॉल में मैडागास्कर में लग रही अंडर 18 नेशंस कप में कल हमारे लड़कों ने कोमोरो आइलैंड्स को 3 सेट से हराया। आज दूसरा मैच रेनियन आइलैंड के खिलाफ। साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के पांचवें चरण फिफ्थ स्टेज में कल हमारी हमवतन किम ले कूपियना 12वें स्थान पर आई। ओवरऑल रैंकिंग में वो 2 कदम ऊपर अब 13वें स्थान पर हैं। और मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल फुटबॉल रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस सप्ताहांत इस वीकेंड 2 मैच हैं। शनिवार को सैटरडे मैच बोनाकोय की टीम रेड स्टार का मुकाबला रेनबो गांबे से है और रविवार संडे मैच एसोसिएशन रोशनॉय वर्सेस स्पोर्टिंग बोज रिवियर जुरान पर। सभी मैच 3:30 बजे रोशनॉय फुटबॉल ग्राउंड में। That's it. The latest from the sports world. I'll catch you very soon. Till then, enjoy the music on Radio Masti. Take care. Bye-bye.
1: Thank you so much, Arvind.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: RM2, Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Moments that matter with Sikom.
3: जीवन के सबसे खूबसूरत पल स्क्रीन के आगे नहीं बल्कि उस सब जना संगे जियल जाला जिकरा हमने खुशी रहिला जा। यही खातिर सिकोम लगे जिंदगी के आसान बनाए खातिर डिजिटल माध्यम अपनाई ले है जा जिकर से आप सब औसन पल जस्ती बिताए जो तोहर खातिर जस्ती मायना रखेला। एगो को ताशो खोजा था वह बस कुछ क्लिक में तैयार हो जाए। अपन प्रीमियम के पैसा चुकाए खोजा था वह ये आसान बा। आप सब हमनी के ऑनलाइन पेमेंट के सुविधा से हाली से आर बिना डरे एकदम सुरक्षित तरीका से उ चुकाए। अपन पॉलिसी देखे के हो या अपन अप्लिकेशन कहाँ पहुँचल बाटे ये जाने खोजा था वह आप ये सब कहूँ से कबो भी अपन सुविधा के अनुसार करे सकब। सिकोम के डिजिटल सेवा के एक के गो

0: मकसद है तुहर पूरा अनुभव आसान सीधा और बिना कोनो झंझट के बनाए के। काहे कि सबसे नीमन टेक्नोलॉजी उहे है जो तुहर जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा आनंद ले के समय दे जो सच्चाई में मायना रखेला। इमे नियम और शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikom.
2: Entre les mamans, on fait quoi? Et l'énergie à revendre? On a tous besoin d'une pause. Heureusement, McDonald's s'occupe de tout pour nous faciliter la vie. Pour les enfants, c'est la magie du Happy Meal. Espace de jeu, face painting et des animations gratuites. Retrouvez le programme complet des animations sur la page Facebook de McDonald's Maurice. McDonald's, les vacances se savourent ensemble. McDonald's, pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
3: RM2 Radio Musty.
4: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musty, you're not

0: 7:56 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ. ये है आपका रेडियो मस्ती.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: जेम्स RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं. अब हम 8 बजे के समाचारों की ओर इस बार मिलते हैं आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस के साथ.

नमस्ते, आवाज़ भोजपुरी में समाचार सुने जा। सिडनी पियर बुलंद की ओ लिबर पार्टी के भीतर अपन आवाज बुलंद करे के और अपन सिद्धांत के रक्षा खातिर आलियंस जो शौंशमों संगे बनल रही और बोले लन की देश के सार्वजनिक वित्तीय स्थिति चिंताजनक बाटे और बढ़ल कर्ज की नजरअंदाज नहीं करल जा सकी। उस सरकार के सकारात्मक कदम की स्वीकार करते हुए आर्थिक विकास, जस्ते राजस्व सृजन और सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन पर ही जोर दिलन। नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान के महत्वपूर्ण भूमिका हुएला। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर ही बरिस के विषय जो कारगर बाटे ओकरा आर मजबूत करे के रखल कर बाटे, जे स्तनपान के लाभ और माता लोग के सही जानकारी और सहयोग प्रदान करे के महत्व पर ही जोर देवेला। कयन मॉरिशस वासी खातिर सामाजिक आवास, बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य के उम्मीद है। आवास एवं भूमि मंत्री देश भर में आवास दे जाए होला के प्रगति की जानकारी देलन। बकिर चाबी सौंपे ले आगे कुछ औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरा कर जाए के बाकी बाटी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एगो पोजिशन पेपर के अनुसार मॉरिशस के कानून समान लिंग होला व्यक्ति के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगैले बाटे। रिपोर्ट में बोलल गल बा कि अधिकार के मान्यता न मिले होला पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकें जा। और दूसरे देश के समाचार में ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नौवहन मार्ग पर ओमान संगे समझौता कर ले बाटे। बकिर उच्च चेतावनी दे रहे बाटे कि अमरीकी नाकाबंदी के कारण इस सुरक्षित आवागमन के गारंटी नहीं देवेला। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।

0: मम्मी लगाती थी रोजेट, याद है?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: लड़के हंस रहे थे, हाँ हाँ वो लड़कियां जो जो टोटी ऐसे चोटी बांध के आती थी ना भाई, आप अपना सोचो ना, आप तो ऑयल लगा के बाल एकदम ऐसे चपेट कर देते थे सामने में, हाँ ये नहीं बोलोगे आप। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:08 हुए हैं और आज है 6 अगस्त। आज कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर वेदिता आ गई है साथ देने के लिए। आज तो बस ये है कि जब थर्सडे का दिन आता है तो लोग कहते हैं कल फ्राइडे है, इतनी खुशी होती है को कल फ्राइडे है, मतलब फ्राइडे यानी कि अनाउंस हो गया कि वीकेंड आ रहा है, सो आज से ही वो इतने खुश हो जाते हैं। ये खुशी बरकरार रखना, ये खुशी जो है ना मंडे को भी रखना, ठीक है? चलिए इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं। ये आपका मॉर्निंग बीट है विदिता के साथ, एंड विधिमा भी आ गई है, कहती है कि जानना नहीं चाहेंगे कि आज दिन भर मौसम कैसा होगा। ऑफकोर्स जानना चाहेंगे, चलिए मौसम का हाल सुनते हैं विधिमा के साथ।
3: मस्कोरिंस के दक्षिण दक्षिण पूर्व पर विकसित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य और अस्थिर हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व तथा ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होती रहेगी, कभी कभी सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18, अन्य इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:37 पर और आज शाम 5:54 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
4: La foire Belbel Kadi retourne cote winner.
5: Belbel Kadi de retour cote winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. Le beurre Erika de 200 grammes à 99,95 € et du mercredi 5 août au jeudi 6 août, le shampoing Siam de 350 ml à 99,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
4: Nous l'accord.
6: On est tous winners.

सुबह के 8:14 मिनट हुए हैं गाइस, डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 549 एंड 1294 फॉर योर डेडिकेशंस। इट्स अ लवली वेदर आउटसाइड, आई होप कि आपका मूड एकदम टकाटक रहे, आप खुश रहे। चलिए थोड़ी देर में गेम लेकर आ रहे हैं, गेट रेडी।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो हम भी शुरू करते हैं, आपके लिए सवाल लेकर आए हैं, सही जवाब दोगे तभी इनाम मिलेगा। अब आपको क्या मिल रहेगा भाई, NBC के साथ खेलोगे, राजस्थान वर्क्स के साथ खेलोगे तो इनाम तो मिलना ही है ना। द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड एंड आपको मिल सकता है अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स और साथ में 1 foot कूपन फॉर द जेम्स लिटिल इंडिया शाही थाली जो कि हो रहा है ऑफकोर्स उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI LIC 12 अगस्त से 16 अगस्त SBICC Pi में सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। सोचो इतने टाइम में आप कितने शॉपिंग कर सकते हो, यानी शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा, सब ख्याल रखा है, सब आप जाओगे थोड़ा सा थके हारे जाओगे तो थोड़ा चाय हो जाए या खाना हो जाए, फिर उसके बाद आप शॉपिंग करोगे, फिर उसके बाद आप थक जाओगे तो आप बैठ जाओगे, एंटरटेनमेंट है। क्या है भाई, 5 दिन में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जैसे हमने कहा था ना, शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली फन है तो फैमिली के साथ जाएंगे, इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज़ होने वाले हैं रोज़, मैजिक शोज़ भी होंगे जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उनकी छुट्टियां भी चल रही हैं, फैशन शो भी होने वाला है, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जेंजी को बहुत पसंद है, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन। जी हाँ, इनको सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं गाते हुए, यहाँ पर आपके सामने लाइव गाएंगे, सोचो कितना मज़ा आएगा। और स्पेशल अपीयरेंस होगा बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, इनको भी आप सिर्फ टीवी में ही देखते हो या फिल्मों में देखते हो लेकिन ये आपके सामने होंगे, इनसे बात कर सकते हो, सेल्फीज ले सकते हो, क्यों नहीं, तो ये मौका आपको मिलेगा। साथ में कानमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जो ब्लड देते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंड होगा फूड फेस्टिवल जिनको खाने पीने का बड़ा शौक है जी हमारी तरह, और सिर्फ मैं अकेली नहीं, पूरी टीम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाई इवेंट वर्क्स लिमिटेड। अब आप सोचिए, आपको अगर ये 4 एंट्री टिकट्स और 1 foot कूपन चाहिए तो क्या करना है, मेरे सवालों का। कहते हैं लोग एक ही गाने पे तो क्यों अटकी रहती है, क्योंकि यही गाना है जो थोड़ा सा आपको इनकरेज करता है ना। आप मुझे ये बताइए कि रवीना टंडन, जी हाँ रवीना टंडन ने किस मूवी के साथ अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था। जी हाँ, हमारी जो रवीना टंडन है, इन्होंने किस मूवी के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। आपके सही जवाब 5491294 पूरे नाम और पते के साथ।
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड, रेडियो मस्टी।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वैसे अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग याद आ गया, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। चलो सुबह के 8:32 हो रहे हैं और इसी के साथ हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था कि रवीनाथ टंडन ने किस फिल्म के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, एंड द राइट आंसर इज पत्थर के फूल। आ जा वो गाना था कभी तो न न न न न। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नहीं, मैंने गाना शुरू कर दिया तो भाग जाओगे ना, तो पत्थर के फूल इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि उनको इस फिल्म के लिए मिला था फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, और उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है जो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, जैसे दिलवाले, मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी एंड लाडला मूवी जहाँ पर उन्होंने श्रीदेवी के

0: साथ काम किया था वहां पे तो उनको फिल्मफेयर की तरफ से अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. फिर गोविंदा के साथ इतनी सारी फिल्मों में आई. इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी. बहुत सारी फिल्में आई थी, बड़े मियां छोटे मियां, दूल्हे राजा, अनाड़ी नंबर वन एंड बहुत सारी इन्होंने मूवीज में काम किया है. अभी भी उतनी खूबसूरत हैं जितनी पहले थी. ओके और इनको तो नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. चलिए हमारा सवाल था और हमें जवाब मिल गया और यहाँ पर सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं चलिए जानते हैं. सीता सिब्दोयाल फ्रॉम फॉरेस्ट साइड, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आपको मौका मिल रहा है इनाम जीतने का एमबीसी की तरफ से और राजस्थान वर्क्स की तरफ से आपको मिल रहा है फॉर एंट्री टिकट्स, वन फूड कूपन फॉर जेंट्स लिटिल इंडिया, शाहिद हाली. और साथ में मैं आपको बताऊं ये जो उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल है इट्स पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12 अगस्त से 16 अगस्त SBICC पाई में लगेगा दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक, जहां पर आप शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और पूरा ये जो फैमिली फन होता है इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट वर्क्स लिमिटेड की तरफ से. चलिए इसी के साथ समय हो गया है, जितने भी लोगों ने हमारा स्पोर्ट्स मिस कर दिया अरविंद से एक बार फिर मिलते हैं.
1: स्पोर्ट्स न्यूज, रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: एंड यस, गुड मॉर्निंग अरविंद.
2: गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को. शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ खेलों के साथ. राष्ट्रमंडल खेलों के हमारे गोल्डन बॉय रेमी फेये का कल शानदार स्वागत किया गया. ससयू सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जश्न का माहौल था. प्रेस वालों को रेमी फेये ने बताया कि उसे खुशी है कि वो 28 साल बाद मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीत पाया. पिछली बार सिल्वर मेडल से वो निराश हुआ था, पर इस बार भले ही कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा था पर वो फुल फिट था और बहुत लगन परिश्रम से ट्रेनिंग करके फल गोल्डन बनाया. रेमी फेये ने मॉरिशस के खेल इतिहास का एक नया पन्ना खोला. उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा. यूईएफए चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के मैच कल खेले गए. AGF ने 2-1 से साबा टीम को हराया. फेनेराबाचे की जीत हुई 2-0 से स्टूम क्रांस के खिलाफ. यूईएफए यूरोपा लीग में फेरेनवारोस की जीत 1-0 से गोनिक जाब्रे टीम के खिलाफ. फिर कॉन्फ्रेंस लीग में ब्रांस 0 अपोलो 1, पनाथिनाइकोस 1, CSKA सोफिया 1. आर्सेनल की हार हुई फ्रेंडली मैच में 3-1 से रियल बेटिस के खिलाफ. कई फर्स्ट टीम खिलाड़ी अभी तक छुट्टी में हैं, पर मैनेजर माइकल आर्टेटा इस बार निराश हुआ. मालोका 3 पेरिस सेंट जर्मेन 0 और एसी मिलान इंटर मिलान के बीच मैच ड्रॉ 1-1. अन्य फ्रेंडली मैचों में कादिज, विलारियल, मार्सेय, टोरिनो, लाजियो, ब्रेस्ट, नापोली, टूलूज, रियल वालादोलिद, सेल्टा वीगो, इन सभी टीमों की जीत हुई. ऑस्बर्ग ने 15-0 से श्वास टीम को पछाड़ा. चेल्सी का खिलाड़ी मिकाइलो मुड्रिच 20 महीने बाद मैदान में उतरा. यूक्रेन का मुड्रिच डोपिंग सस्पेंशन पूरा करके वापस आया. अफसोस उसकी वापसी पर चेल्सी की हार हुई 1-0 से यूवेंटुस के खिलाफ. डैनी वेलबेक ने भी चेल्सी के साथ पहला मैच खेला. निकोलास जैक्सन जो लोन पर बायर्न म्यूनिख में था उसकी भी वापसी हुई. चेल्सी इस सीजन यूरोप में नहीं खेलेगा, पर नए कोच जावी अलोंसो का स्क्वाड लदा हुआ है, भरा हुआ है नए और पुराने खिलाड़ियों के साथ. मैनचेस्टर सिटी के लिए जेरेमी मोंगा खेल पाया. 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सिटी ने मोंगा को लेस्टर से खरीदा चुपचाप. 17 साल का है, अच्छा परफॉर्मर रहा उसका. सिटी ने फ्रेंडली मैच में के लीग 11 को 3-1 से हराया. रायन 8 नूरी का गोल, रेजर्स और मुबामा का 1-1 गोल रहा मैनचेस्टर सिटी के लिए. फीफा की इमरजेंसी क्राइसिस मीटिंग आपातकालीन बैठक में अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर इन्फांटिनो पर उंगलियां उठ रही थी. फिर भी फीफा के सीनियर एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट बरकरार है और इन्फांटिनो प्रेसिडेंट पद पर रहेगा. न्यूकासल यूनाइटेड का नया बॉस बना मैथियास जेजल. एडी हाउ के जाने के बाद दिमाग पाइज में आ रहा है नया कोच. जर्मनी का मैथियास जेजल पहली बार के लिए प्रीमियर लीग में आ रहा है. इससे पहले वो सऊदी प्रो लीग टीम अल अली और ऑस्ट्रिया की रेडबुल साल्ज़बर्ग में काम कर चुका है. न्यूकासल यूनाइटेड में एडी हाउ

का स्थान लेना आसान नहीं होगा। ऊपर से तुनाली और गोर्डन चले गए, कप्तान ब्रूनो गुमारेस भी जाने वाला है आर्सेनल में। एवर्टन ने आर्सेनल से मिडफील्डर नोगार्ड को साइन किया। क्रिश्चियन नोगार्ड के लिए 7 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने पड़े। द टॉफीज ने मिडल्सब्रो से डिफेंडर हेडन हैकने को भी साइन किया। चेल्सी से टैरिक जॉर्ज भी आ रहा है। आइवरी कोस्ट के जियो मांडे के लिए डायमंड का दाम रियल मैड्रिड 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर यान जियो मांडे को साइन करने जा रहा है। आरबी लाइप्ज़िग के साथ मंजूरी हो गई है। इधर लिवरपूल पेरिस सेंट जर्मेन में डबल रेड मारना चाहता है। बाकोला के अलावा सेनेगल का विंगर इब्राहिम एम्बाये भी लिवरपूल की नजर में है। रियल मैड्रिड का डिफेंडर राउल असेंसियो भी लिवरपूल का टारगेट है। रोड्री को खरीदने के लिए रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड के दो टारगेट चुआमेनी और कमाविंगा को बेच सकता है। प्रीमियर लीग में प्रमोट हुई हल सिटी टीम ने क्लब रिकॉर्ड 20 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ग्रीस के गोलकीपर कोस्तांतिनोस जोलाकिस को साइन किया ओलंपियाकोस से। इधर के वर्डे का हीरो गोलकीपर वोजीना अब चिली की चैंपियन टीम कोलो कोलो में खेलेगा। वर्ल्ड कप में उसके टॉप परफॉर्मेंस के बाद उसे साइन किया गया। उसका असली नाम जोजिमा योजे एवोरा अध्यास है, पर वो चाहता था कि उसके शर्त में वोजीना नाम हो। इसके लिए चिली फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी मंजूरी दे दी है, स्पेशल डेरोगेशन। और वॉलीबॉल में मैडागास्कर में लग रही अंडर 18 नेशंस कप में कल हमारे लड़कों ने कोमोरो आइलैंड्स को 3-7 से हराया। आज दूसरा मैच रेनियन आइलैंड के खिलाफ। साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के पांचवें चरण फिफ्थ स्टेज में कल हमारी हमवतन किम ले कूपियना 12वें स्थान पर आई। ओवरऑल रैंकिंग में वो 2 कदम ऊपर अब 13वें स्थान पर हैं। और मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल फुटबॉल रोस्टोन स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस सप्ताहांत इस वीकेंड 2 मैच हैं। शनिवार को सैटरडे मैच बोनाकोय की टीम रेड स्टार का मुकाबला रेनबो गांबे से है। और रविवार संडे मैच एसोसिएशन रोस्टोन वर्सेस स्पोर्टिंग बॉयज रिवियर जुरांपा। सभी मैच 3:30 बजे रोस्टोन फुटबॉल ग्राउंड में। That's it. The latest from the sports world. I'll catch you very soon. Till then, enjoy the music on Radio Musti. Take care. Bye-bye.

दोस्तों हमारी जो बॉडी है ना वो हमसे हमेशा बात करती है, वो हमें साइन देती है। जब आप बवासीर लेते हैं, जब आप यौन करते हो तो आपको बताएं अब हमें नींद आ रही है ना। जब हमारा पेट गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ करता है तो मुझे पता है कि अभी भूख लगी, हमें खाना खाना चाहिए। जब हमारे सर में बॉडी में दर्द होता है तो हमें पता है हमें पेन किलर लेना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि जब हमारा बीपी बढ़ जाता है या तो फिर हमारा शुगर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हमें पता है कि हमें नमक चीनी तेल कंट्रोल में करना चाहिए। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं? फ़ोन जेब में, चश्मा सर पे, फिर भी याद नहीं रहता है ना। फ्रिज के सामने दरवाज़ा खोल के खड़े रहते हैं, क्या चाहिए पता नहीं। कभी कोई बात करता है तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बात करके चला भी जाता है, फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ कहा क्या इसने। लोगों से कहो, लोग कहेंगे अरे यार मैं भूलने लगती हूँ, कहेंगे अरे ये तो भुलक्कड़ है, इसको बादाम खाना चाहिए। पर क्या ये साइन सिर्फ बादाम खाने की है? यहाँ पर आपका दिमाग कहता है ओ हेलो मैं थक गया हूँ, इधर उधर की बातें सोच सोच के मैं थक गया हूँ, मुझे और परेशान मत करो। ये ऑटोमेटिक डिलीट करते जाता है क्योंकि उनको ये सब स्टोर नहीं करना अपने दिमाग में। उनको चाहिए खुशी के पल, उनको चाहिए कुछ जादू की झप्पियां। हमारा दिमाग ऐसा ही है। हमारा दिमाग जो है ये जब बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर ये जो कचरा भर जाता है सोच सोच के, ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मैं क्यों करूँ, सबकी चीज़ें सोच सोच कर, सबके बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग बहुत कुछ अपने अंदर जमा करता है। फिर एक टाइम आता है इतना सब कुछ गंदा भर जाता है दिमाग में कि अच्छी चीज़ें आती ही नहीं है और आप भूलने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग परेशान रहता है। इसीलिए कौन क्या सोच रहा है उनको सोचने दो, वो भी आप ही सोचोगे तो वो बेचारे क्या सोचेंगे। जिंदगी खूबसूरत है, जो आज है वो पल, वो आज है हमारे पास, वो हमारा है। इसीलिए कल क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, कौन क्या सोच रहा है इसके बारे में मत सोचो। आपकी जिंदगी है, प्यारी जिंदगी है, इसमें आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, ऐसे लोग जो आपको गले लगा ले और आपको लगे कि भाई सारा स्ट्रेस दूर हो गया, ऐसे लोग जो आपको आकर ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे लोग जिनकी ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं जिनसे आपको पता है कि ये तो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल में लाइए, अच्छी अच्छी बात सोचोगे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Guys, you're listening to Radio Musti. Time for me to say bye-bye. जी हाँ, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होता है. अब हम आपसे मुलाकात करेंगे. फ्राइडे नाइट है, रात के 9 बजे हमारे लेट नाइट में. और भाग्य तो आपको बताए हैं कि हमारे बाद मनीष मारे हैं साथ देने के लिए. सो यू गाइस टेक केयर. और आपको यही कहूँगी कि लाइफ में हमेशा खुश रहने का, टेंशन न लेने का, न देने का, बस जो भी मेरे प्यार से जादू के झप्पे देने का, और अपने लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ से भी जो स्ट्रेस है उसको करने का. सो यू गाइस थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे. लव यू. टेक केयर.

0: सभी को नमस्कार। सिडनी पियर ने कहा कि वे लेबर पार्टी के भीतर अपनी आवाज़ बुलंद करने और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अलियंस डू शांजमेंट के साथ बने हुए हैं। उनका कहना है कि देश की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और बढ़ते कर्ज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष का विषय जो कारगर है उसे और मजबूत करें रखा गया है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व योगदान प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। आवास एवं भूमि मंत्री ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पोजीशन पेपर के अनुसार मॉरिशस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं। और विदेश में दक्षिणी लेबनान के बुर्ज शिमाली और अल मंसूरी कस्बों पर रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं। ऐसी खबर है कि घायलों को शहर के अस्पतालों में ले जाया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नमस्कार, 9 मिनट होने को है. आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ. गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मनीषमा आपके साथ है. जुड़ चुकी हूँ मैं आपके लिए लेकर इतने सारे लवली सॉन्ग्स, फिर से 2000 के गाने, फिर से नए गाने. तो यहाँ पर बिग बिग थैंक यू गुजरात वेदिता, जिन्होंने अपने

0: वाइब्स देकर आपके मॉर्निंग को और भी खुशहाल बना दिया। अभी के लिए हम भी जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए। घर पे हो या फिर ट्रैफिक में अभी तक फंसे हो, कोई बात नहीं, वी आर हियर टू कीप यू कंपनी विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड द गुड गुड वाइब्स। गुड मॉर्निंग आर देयर लाल पिलिया किया, हियर वी गो। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

जवानी जाने मन। वैसे मैं जानती हूँ अभी तो बहुत सारे लोग तो रस्ते पर हैं, लेकिन I'm going to talk to all the ladies and gentlemen जो कि अभी घर पे है, बस अपना जो ऑफ डे है एंजॉय भी कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी हम देना चाहते हैं, माना कि सर्दी है

0: की आंखों खोलने को मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को और फ्रेश और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा ये काम जरूर कीजिएगा, घर की खिड़कियों को 15 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए खोल दीजिए। फ्रेश हवा और नेचुरल सनलाइट न सिर्फ घर को फ्रेश फील करा देती है बल्कि आपके मूड को भी इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देती है। साथ ही ये जो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन बज ही रहा है आरआरएम टू रेडियो मस्ती म्यूजिक प्लेलिस्ट इज ऑन, यकीन मानिए चाय का हर एक सिप और भी स्पेशल लगने लगता है। फ्रेश होम, फ्रेश माइंड, फ्रेश थॉट, क्या कहते हो, मान लीजिए हमारी बात।
1: You're listening to Musty Mornings.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: मजे करो और जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप लेते चलो, हमेशा स्माइल करते रहो क्योंकि आपकी जो स्माइल है इन्फ्लुएंसल हो जाते हैं. Yes, you just have to influence other people also. आपकी जो energy है सभी के लिए प्रभावित है. And I just want you to enjoy each and every day, each and every moment. Be mindful, be present, love life, love yourself. Here we go for your horoscope.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: जी हाँ, चलिए जी शुरुआत करते हैं with मेष राशि.
2: Aries, मेष राशि.
0: आज का दिन नए आइडियाज और फ्रेश एनर्जी लेकर आएगा. किसी जरूरी काम में सफलता मिल सकती है आपको. लकी नंबर नंबर 3.
2: टॉरस, वृषभ राशि.
0: आज पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हर सिचुएशन में आगे बढ़ा देगा और घर का ये जो माहौल है खुशनुमा रहेगा. लकी नंबर नंबर 8.
2: जेमिनी, मिथुन राशि.
0: आज आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को इम्प्रेस करने वाली है. किसी पुरानी प्लानिंग पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम शुरू करने का ये जो

0: अवसर है आपको मिल सकते हैं आज लकी नंबर 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: फैमिली और रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने का दिन है। छोटी छोटी खुशियां भी दिल को सुकून देगी आपको। और लकी नंबर 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आपका कॉन्फिडेंस आपकी पहचान बनेगी। किसी सीनियर या दोस्त से अच्छे सपोर्ट और एडवाइस भी मिल सकता है। सो लकी नंबर 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखें, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलेगा आपको। लकी नंबर 6।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज बैलेंस और पॉजिटिविटी के साथ हर काम आसान लगने वाला है। किसी नए इंसान से मुलाकात भी हो सकती है और फायदा भी हो सकता है। लकी नंबर 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। आज हर लिया गया एक अच्छा सा फैसला ना फ्यूचर में फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। लकी नंबर 4।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: नई नई अपॉर्चुनिटीज का स्वागत कीजिएगा अपनी जिंदगी में। लर्निंग और ट्रैवल से जुड़े योग बन सकते हैं। और लकी नंबर 7।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: करियर और फाइनेंस में दोनों में पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखेगा आपको। फोकस बनाए रखें। ओके जी। लकी नंबर 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: दोस्तों और कलीग्स के साथ टीम वर्क आपको सक्सेस दिलाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। लकी नंबर 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज अपने हेल्थ और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन, सिट बैक एंड रिलैक्स। शाम तक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है आपको। लकी नंबर 12। ये थी आपके लिए हॉरोस्कोप।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. You're listening to Musti Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
2: Stay tuned. Stay Musti. Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, it's 10 a.m. सिंधिया सिंह शिप्त समाचार आपके साथ विद्यमान. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार. कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है. आवास एवं भूमि मंत्री ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं. नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष का विषय जो कारगर है उसे और मजबूत करें रखा गया है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व सहयोग प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पोजीशन पेपर के अनुसार मॉरिशस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं. आयोग के अध्यक्ष के अनुसार ये दस्तावेज प्राप्त शिकायतों के आधार पर तैयार किया गया है. और विदेश में ईरान का कहना है कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का समझौता अंतिम रूप दिए जाने की कगार पर है, क्योंकि दोनों देश इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले मार्गों के कोऑर्डिनेट्स पर सहमत हो गए हैं. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है, और उन्होंने कहा कि वो युद्ध के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. कलिमाए रोड रिविया जुरांपा में 63 साल के 63 years old के श्री बेदानंद दौतल, जो आज मेकानिसियन मोटरसाइकिलिस्ट महाज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर कलिमाए रोड रिविया जुरांपा से उठाकर उत्तरीव रिविया जुरांपा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. महात्मा रोड लालमाटी में 59 साल की 59 years old की श्रीमती सेविका देवी सिंह जुमाहिर, जो फाउदो पैराशी नाम फाउदो और जो मीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. उनके अर्थे आज दिन के 2:30 बजे उनके पति श्री रवीन जुमाहिर के घर महात्मा रोड लालमाटी से उठाकर गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि दी जाएगी. कमीशन टूडे एट 2:30. गांधी भवन स्ट्रीट खुशनुआ में 58 साल की 58 years old की श्रीमती जयरानी जीवन, पैदाइशी नाम पहलादी और जो साधना नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थे आज दिन के 2:30 बजे उनके पति श्री सुभाष जीवन के घर गांधी भवन स्ट्रीट खुशनुआ से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30. वाल्टों मोटैलोंग में 60 साल की 60 years old की श्रीमती यूमिला जैन पसान, पैदाइशी नाम सी गुलाम और जो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 2:15 बजे उनके पति संजय पसान के घर वाल्टों मोटैलोंग से उठाकर बामौशों के शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:15. रॉयल रोड मिडलैंड्स में 39 साल के 39 years old के श्री विष्णु नेमचंद, जो बेस्ट नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी मां इंदिरा नेमचंद के घर रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.
0: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: से गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ती. यहां पर 549914 पर आपके मैसेजेस की बहुत चैट हो रहा है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. सो अभी के लिए यहां पर कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं कैसे आपके मॉर्निंग को भी और भी मजेदार और एनर्जेटिक बना सकते हैं. कैसे फैशन टिप्स, ये सब कुछ आपको शेयर करेंगे आपके साथ. और यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक. देन आई एम गोइंग टू प्ले सम रियली नाइस ट्रैक फॉर यू 2026 2005. दरअसल मिक्स करके 90s के कुछ सिलेक्टेड गाने आपके लिए आपके मनोरंजन के लिए. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए आप तोहर अपिकाशों कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est dans 16 ans ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir du 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
5: Paris pour plus grand festival shopping, Utsav India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir du 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h à soir. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: अपने दिन की प्लानिंग कीजिए. देखिए पूरा दिन कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बन जाता है. हर एक मिनट वैल्यू कीजिएगा और क्योंकि ये जो वक्त ही है जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है. क्या कहते हो आप, मान दो ना मेरी बात. यहाँ पर 5991294 पर आपके मैसेजेस है. हैव अ वंडरफुल डे, बॉन कुआज गुजा टू ऑल दोज जो अभी तक काम कर रहे हैं. सो काम तक पहुंच भी गए हैं, 10:30 बजने को है. थोड़ी देर में फैशन टिप और एक कूल. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए, होप यू हैविंग अ वंडरफुल डे अहेड. तो चलिए यहाँ पर आगे जो है फैशन टिप फॉर यू, आप जुड़े रहिए हमारे साथ थोड़ी देर में. फैशन टिप,
3: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: से कहते हैं कि विंटर हो या हल्का सा कूल वेदर, एक स्टाइलिश ए लाइन प्लीटेड स्कर्ट को फुल स्लीव टॉप और कोजी कार्डिगन के साथ पेयर कीजिएगा. जहाँ ए लाइन या प्लीटेड स्कर्ट को फुल स्लीव टॉप या फिर कार्डिगन के साथ पेयर कीजिएगा. हाई नी बूट्स और या सिर्फ क्लोज टू फ्लैट्स, सिंपल बस लुक को और भी एलिगेंट बना देता है. और आउटफिट को थोड़ा सा कंप्लीट कर दीजिएगा, एक सिंपल बेल्ट एड अप और मिनिमल ज्वेलरी, कान में छोटी सी वाली, कंफर्टेबल और क्लासी. ऑसम सिलेक्शन फॉर यू. कमिंग अप फॉर यू इज थोड़ा सा प्यार हुआ है उदित नारायण की आवाज में. मैंने दिल तुझको दिया मूवी से लिया गया ये गाना. Here we go.
3: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion. How-

चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम टू प्ले सम गेम फॉर यू एंड हमारे साथ खेलिएगा जरूर 549 and 1294 पर और जीतिए हमारे साथ MBCET 4 एंट्री टिकट्स एंड फूड कूपन ऑफर्ड बाय जेन्स लिटिल इंडिया शाहिद हालिया दी उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LICS फ्रॉम द 12th August 2026 टिल द 16th August 2026 एट SBICCPI आज फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM तो बताइएगा वहां पर एंटरटेनमेंट शोज तो होंगे ही होंगे, इंटरनेशनल होम शॉपिंग भी होंगे, मैजिक शोज, फैशन शोज वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए ये सवाल रहा कि वहां पर बॉलीवुड कोरियोग्राफर का एक स्पेशल अपीयरेंस होगा, तो कौन आने वाला है आपका साथ देने के लिए एज अ स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर। नाम बताइए कौन से बॉलीवुड कोरियोग्राफर आने वाला है आपके लिए। सिंगर तो आपको आप तो जानते ही है, पर नहीं जैन आने वाले हैं इंडियन आइडल सिंगर, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड से कोरियोग्राफर भी आने वाले हैं। नाम बताइए कौन से कोरियोग्राफर का हम सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं नाम ऑन 549 and 1294 पर। अमेजिंग डे गोज आउट टू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट विद योर फुल नेम एंड एड्रेस।

0: इस पल में मुझको जीना है, बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट को जी भर के जी लीजिए. यही तो जिंदगी है. टू अप्रिशिएट, टू लव इट एंड टू एक्सेप्ट इट द वे इट इज. यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल, अब दिवोत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. वहाँ पर क्या स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर होने वाला है? और हाँ, तो कौन से बॉलीवुड कोरियोग्राफर आने वाला है? उनका नाम है धर्मेश सर. वैसे हमारे साथ हमारे लकी विनर हैं, वो बन गए विजय ताफो. 4 entry टिकट्स एंड 1 foot कूपन फॉर द शाही थाली एट जेंट्स लिटिल इंडिया. ओके जी, हमारे साथ लकी विनर बन गए हैं विमा द सॉय, जो रहते हैं कौन डिमास्क. Congratulations! वैसे the game is powered by Rajasthan Works Limited. You played with us and Rajasthan Works and you won exciting prizes. ये है 4 entry tickets आपके नाम and a food coupon for the Jeans Little India Shahi Thali Adi Utsav India Mauritius Shopping Carnival. जो शुरू होने वाले हैं the 12th of August 2026 till the 16th of August 2026 at SBI CCPI as from 10 AM till 9 PM. होंगे आपके खिदमत में इंटरनेशनल शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज जैसे कि मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय द बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैन मैशो, ब्लड डोनेशन कैंप, फिट फेस्टिवल, ऐसे सारा कुछ ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.
1: RM2 Radio Musti.

0: To
1: Radio Musti
0: North, South
1: 103.5,
0: East, West
1: 96.4,
0: Center
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hai. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से विधमा के साथ. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पोजीशन पेपर के अनुसार मोस्टस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं. कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है. आवास और भूमि मंत्री ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं. नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व सहयोग प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है. और विदेश में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार देश में अलग अलग हमलों के दौरान अपहरण किए गए 300 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है, जिससे संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा एक ही दिन में किया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया गया है. परिवारों से मिलाने से पहले पीड़ितों को एक सैन्य ठिकाने पर चिकित्सा सहायता दी जा रही थी. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musti Mornings. Stay tuned. Stay Musti. Radio Musti.

0: भी धूम फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. आई गॉट द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन इन दिस लास्ट आवर. वैसे आखिरी घंटा है. आई एम गोना मेक इट वेरी मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि आई गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द ईयर 2000 and 2026. वैसे आते जाते इतने सारे साल बीत जाते हैं लेकिन ऐसे ऐसे गाने कभी पुराने हो जाते. क्या कहते हो आप?
1: Radio Musti. Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na 16 ans ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी. काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली. डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में. हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने. फोन नंबर 5799-3782. हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: 102 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Mustang.

RM2 रेडियो मस्ती। फ्रस्ट्रेशन को फैसिनेशन में बदल दो, देखिए कि लाइफ व्हाट रिजर्व्स फॉर यू।

0: जी ऐसे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग चल पड़े हैं आप सभी के नाम यहाँ पर. मीठी मीठी चाशनी, गुड मॉर्निंग आरवी, कैसे हो आप? हैव अ वंडरफुल डे. गुड मॉर्निंग दीदी, हाउ आर यू? यली श्याम जी, नेक्स्ट सॉन्ग ही चमको मूवी से आजा मिलके, ये बहुत ही अच्छा गाना है. क्या बात है, आपके टेस्ट में भी क्या बात है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेस्ट है. आजा मिलके फ्रॉम द मूवी चमको, राइट? आपका फेवरेट, हमारा भी फेवरेट. वैसे सारे के सारे गाने, बस सभी के नाम जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मासी. हियर वी गो.
1: आरएम2 रेडियो मासी.

चल पड़ा है कुबलाल फैमिली ऑफ हिंदुओं जी हम पर जो कि हमारे साथ जुड़े हैं दिना तारिणी जी जो कि एंजॉय करें हमारी प्लेलिस्ट को. वैसे यही आशा हम करते हैं कि आपका दिन शुभ हो जाए, बस यूं ही पॉजिटिविटी के साथ भरे रहे. 11:40 हुए हैं. ये है RM2 रेडियो मस्ती.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

अगले गाने के साथ जाने का समय हो चला है। अलका याग्निक हरिहरन आ रहे हैं, दिल हमारा हुआ है अलबीरा मूवी से लिया गया ये गाना आप सभी के लिए। वैसे आपकी कहानी आप पर निर्भर होती है कि कैसे आप कब कहानी लिखना शुरू करना चाहते हैं। जहाँ लिखते जा रहे हैं बस पेन को ले लीजिए और अच्छी सी कहानी हर रोज।

0: Center 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे भी धीमा.

0: के साथ एफएमपी पिछले मई से मुख्य विपक्षी दल हैं। चेतन बाबूलाल ने हमें पुष्टि की है कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को अपना आवेदन सौंप दिया है। अब संविधान की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना राष्ट्रपति पर निर्भर है। सांसद वेरोनिक लोगोविन ने से इस समय रोज हिल की आजसु द्वारा पूछताछ की जा रही है। वे सुबह 9:30 बजे इसके ठीक बाद एंटी ड्रग स्क्वाड कार्यालय पहुंची। रेनियन और मोशस के बीच 155.7 किलो कैनाबिस की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले के कारण उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाजी की गिरफ्तारी हुई है। सांसद वेरोनिक लोगोविन की एक एसयूवी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की गई है। कथित तौर पर उसमें गांजे के निशान मिले हैं। पुलिस जांच के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा इस जोड़े की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। बच्चे का पोषण करना, उसकी रक्षा करना और पहले दिन से उसका साथ देना नवजात शिशु के स्वास्थ्य से के स्वास्थ्य में स्तनपान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए समर्पित विश्व सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष चुना गया विषय जो चीज़ें कारगर हैं उन्हें मजबूत करने का आह्वान करता है। ये स्तनपान के लाभों के साथ साथ माताओं को दी जाने वाली जानकारी और उनके मार्गदर्शन द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर एक विचार विमर्श है। विदेश में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई से भारत भर में मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को बाढ़ से डूबे अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस के यारोस्लाव शहर के ऊपर काले धुएं के भारी गुबार छाए हुए हैं जो देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक का घर है। क्षेत्र गवर्नर इसे दुश्मन के ड्रोन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हमला बता रही हैं और उनका कहना है कि 92 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं तथा मलबे के कारण 3 घरों में आग लग गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। कालीमाई रोड रिवियर जुहांपा में 63 साल के 63 years old के श्री भेदानंद दौतल जो आज मैकेनिशियन मोटरसिक्लेट महाराज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कालीमाई रोड रिवियर जुहांपा से उठाकर उत्तरी रिवियर जुहांपा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रोड मिडलैंड्स में 39 साल के 39 years old की श्री विष्णु नेमचंद जो बेस्ट नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी माँ इंदिरा नेमचंद के घर रोड मिडलैंड से उठाकर मिडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। मोगा पिचित रिविया में 70 साल के 70 years old के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातू नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे मोगा पिचित रिविया से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रामजतन रोड बिजुकाप में 82 साल की 82 years old की श्रीमती तारामती कालकी प्रसान जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के घर रामजतन रोड बिजकाप से उठाकर खौबुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: भाई ये अब तो हमसे हो नहीं पाएगा, आपसे दूर रहना, आपकी और करीब आना चाहते हैं, तभी तो आपके साथ आ गए हैं। दिन के 12:08, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। कैसे हैं आप? थर्सडे आफ्टरनून ऑलरेडी, 6 अगस्त की तारीख। 5499 1294 पर आपके गाने, तो यहाँ पर फरमाइश भी आ रही है, डेडिकेशंस भी हैं, बस मस्त आपका साथ मिल रहा है। Wherever you might be still well tuned, और ऐसे ही प्यार से साथ निभाते रहेंगे till 2 p.m.

0: Created Customs Clearance Center, ICCC, le Chalon Road, Plaine-Magnon. Pas oublier, dos de sang du côté de l'aéroport et ICCC, le vendredi 7 août, de 8h à 16h.
1: RM2 Radio Musty.
2: बारह बजकर 13 मिनट हो रहे हैं. वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन. लंच टाइम है सो सबको शुभाहार बोना पेची. साथ ही साथ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके नाम ऑन 5499-1294. कुछ गोल्डन एरा में कुछ द 90s के एरा में आपको ले चले हैं आपके फेवरेट सिंगर्स के साथ ऑन 5499-1294. गुड आफ्टरनून माय डियर ज्योति फ्रॉम शातो बिनागस. पूरे परिवार मांधव फैमिली के नाम आशनी रेखा एंड सुरेखा के लिए भी. यालेश एंड श्याम फैमिली एज यूजुअल फ्रॉम सुरीनाम. और पन्ना की तमन्ना सुनना चाहते हैं? बस थोड़ी देर में साथ निभाते रहिएगा.

0: I do remember इसमें the great मिथुन नजर आए थे with सोमी आली. बस 90s के गाने दिल के किसी ना किसी कोने में छिपी से जाती है और बस यादें बनकर उभर जाती है. थैंक यू सो मच.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: दिस वन स्पेशली आपके लिए शरीन, आपके पूरे परिवार के नाम.

0: What a lovely gana, Kishore Kumar and of course Lata ji ki awaaze from the 1973's movie Hira Panna.
1: Retro rhythm.
0: Well, इस मूवी के बारे में क्या कहें, इसमें जिना तमान नजर आए थे, लेकिन क्या बात हुई थी इस मूवी के बारे में. As we all know कि इससे पहले दीवानंद और जिना तमान ने एक साथ काम किया था आज भाई बहन इन हरे रामा हरे कृष्णा, और जिना तमान को उस फिल्म के बाद बस सिस्टर्स वाले रोल ही मिल रहे थे. तो दीवानंद ने इस मूवी को लॉन्च की ताकि जिना तमान के कैरेक्टर को बदला जा सके और उसको एक लीड रोमांटिक हीरोइन के तौर पर कास्ट किया जा सके. और उसी दौरान जब ये मूवी बन रही थी लाइनिक की हीरा पन्ना, तो उस वक्त जो थे आर डी बर्मन साहब द ग्रेट म्यूजिशियन, वो डिप्रेशन के से जूझ रहे थे. तो उनको उससे निकालने के लिए, उनके स्ट्रगल से निकालने के लिए कई घंटों बाद जब देवानंद साहब ने उनसे बात की तो ही वॉज इंस्पायर्ड, यानी कि बर्मन साहब इंस्पायर हुए और हाईली मेलोडियस ट्रैक्स इस मूवी के लिए हीरा पन्ना के गाने उन्होंने कंपोज किए और आज भी इतने ही प्यार से सुने गाए जाते हैं. आजकल तो जो नया वर्जन है हीरा पन्ना वाला गाना काफी चर्चित है, लेकिन ओरिजिनल रिमेन्स ओरिजिनल, ये तो आप मानोगे. सो चले 5499 1294 पर कुछ बहुत सारे मैसेज, कुछ नहीं बहुत सारे ओरिजिनल मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर. लाइक गीता सीता भोलू राम परिवार है शातु बिनागस से, आपकी मोंग भगवती एंड एंड एंड और पूरे परिवार. हियर यू आर, नेक्स्ट गाना टू यू टू. हाय नीतू नमस्ते, एज यूजुअल धूम मचे धूम. चले काला पत्थर फिल्म से लिया गया. चाचा धीरज चाची है सुभाषिनी, बेटा दिवेज, जनका सिद्धस परिवार फ्रॉम वाकुआ. चले कोशिश करती हूँ. लेट मी विश ए स्पेशल बर्थडे आपके लिए सुबह. May God bless you with long, healthy and wealthy, happy life ahead. Many, many happy returns of the form. Ish! Ay, ay, ay, kya baat hai. Agla gana aapke naam Abdul Ansara Banu. Saath mein hai Ashish, Himakshi, Rishma. Mishti, aapne bhi gaane ki farmaish ki hai. Chali, main koshish karti hoon. Vakwa se Vishwani Dhuman, Sharda Indira ke naam, Sahelia Neela, Pratibha, Shobha, Gita Gajadhar and aapke poore parivaar ke liye. पॉपलमुसेस से हैं बाहुश, पॉपलमुसेस से मीठी निकित, जियाना, रियांज, भोला एंड मिस्टर गुरुदेव सिद्धुहल आपके लिए भी. हेलो नमस्ते, ट्रस्ट यू आर डूइंग वेल नीतू. यस थैंक यू सो मच. ओ साथी रे, मुझे लगा आप मेरे लिए गा रहे हो. नहीं, ये आपके लिए आपके हबी लेक के नाम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच माय डियर. सो गो साथ टू यू टू स्वीट प्रीति बस थोड़ी देर में.

0: रेट्रो रिदम।
1: बस इधर भी धूम भी मची रहे हैं और 12:37 आपके मैसेजेस आपके रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पर हम भी धूम मचाने की कोशिश कर रहे हैं टिल 2 PM। सो 5499-1294 पर चलिए, चाचा खुश हो गए, बस चाचा खुश तो भतीजी भी इधर खुश हो गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना आपके नाम पंखुरी फ्रॉम धनराज, आप आजू फैमिली है, थैंक यू सो मच, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। हाय नीतू, मेरे लिए सामुआई वाला गाना, ये कब मूवी बनी भाई? ओके ससुराल ससुराल फिल्म का गाना है तेरी प्यारी प्यारी सूरत। आपके लिए बबीता फ्रॉम बोनाकाय, मैं भी ढूंढने ही वाली थी ये सामुहाई मूवी कब बनी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप खुशनुमा किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं पूरी टीम के साथ। कैसी है लीना फ्रॉम प्लेन दे रोज, गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, आपके लिटिल प्रिंसेस जी आके नाम, पति है राजीव एंड शिव शंकर परिवार आप दया एंड ऑफकोर्स विक्रम परिवार के नाम भी एंड ललिता जीतन फैमिली तैयब साहब, गुड आफ्टरनून। ये जो नेक्स्ट गाना है फ्रॉम द मूवी ये रात फिर ना आएगी, ये तो हमको भी पता नहीं आएगी कि नहीं, लेकिन अभी के लिए दिन के 12:38 हुए हैं और एकदम स्पेशल है। आपके नाम इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता, ये नाम तो मैंने पढ़ लिए थे ना। चलिए गाने आपके नाम भी।

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Must

0: आपके नेतू है
1: रेट्रो रिदम
0: व्हाट अ लवली गाना कैसे कैसे गाने बनते हैं ना आज भी बनते हैं लेकिन जो बस गोल्डन एरा या फिर 90s के गाने हुआ करते थे दिल को डेफिनेटली छू जाते थे वन अमंगस्ट देम हम आपके हैं कौन और इस मूवी में 14 सॉन्ग्स बाप रे बाप 14 सॉन्ग्स पहले की मूवीज में हुआ करती थी ऐसे ऐसे गाने राम लक्ष्मण के कंपोजिशंस एंड ऑफ कोर्स दो गाने ऐसे इसमें हैं चॉकलेट लाइम जूस टाटा और मुझसे जुदा होकर मेंबर ये जो फिल्म रही 3.5 आवर्स लॉन्ग रन टाइम और लोग काफी उब गए थे बोल रहे थे बाप रे बाप मूवी तो इतनी लंबी है गाने ऊपर से इतने लंबे फिर जब बाद में मूवी ब्लॉकबस्टर बन गई तो ये जो दो गाने रहे उनमें फिट किए गए एंड ऑफ कोर्स लता जी ने 10 गाने इनके गाए वो भी 4 दिनों में आज एक गाना तो बन जाता है लेकिन पहले के जमाने में कितने वक्त लग जाते थे गाने को रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट बिकॉज उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर्स थे तो उन्होंने 4 दिनों में फटाफट 10 गाने गा लिए और सब के सब सुपरहिट्स थैंक यू सो मच इन गानों के लिए और नेक्स्ट गाना आपके नाम भाई महेंद्र पर्मा कैटो बोन से साथ में है ब्रिंदा हे थैंक यू सो मच कल्याणी जी सैकवा से आपके पति के नाम कृष्ण पूरे परिवार के लिए ये है अनुपमा

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती
2: बस थोड़ी देर में यानी कि 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद इस मिस्ड कॉल कार्यक्रम को जारी रखेंगे टिल 2 PM।

0: एक बज चुका है, सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे याचना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है। फोमी लिटॉ प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जोली जोंका का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले MSM के एकमात्र सांसद हैं। पिछले कई महीनों पिछले मई महीने से फोमी लिटॉ प्रोग्रेसिव

अपने तीन सांसदों पुल बेरांजे, जोआना बेरांजे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल हैं। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को इसकी औपचारिक मांग की। अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। सांसद वेरोनिक लुगोविन

0: गांजे की तस्करी की जांच के सिलसिले में उनके साथ पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत उनके पति गुलशन गोविंद और साथ में रविंद्र चिमाजी को गिरफ्तार किया गया था। सांसद वेहोनिक गोविंद की एक एसयूवी को जब्त करके उसका परीक्षण किया गया, इसमें गांजे के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है। विदेशी खबरों में, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने दो रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल हमले किए हैं, वहां घना काला धुआं देखा गया। इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं। मलबे के कारण 3 घरों में आग भी लग गई। और भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है। कुछ दिनों की राहत के बाद अब मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी है, जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रामजतन रोड बिजुकप में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की कुमारी तारामती कालकी प्रसाद जो चंद्रावती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे दिन के ढाई बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के मकान रामजतन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 2:30 PM। 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे मोगा पिजितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

0: नीला नीला आसमान है भाई और म्यूजिक के नशे में म्यूजिक के इस जादू में हम भी जादूगर बनते चली जा रहे हैं। 1:09 वेलकम बैक 549-912-94 पर नीतु आपके साथ। ये कहाँ गए हम, ये है म्यूजिकल सफर म्यूजिकल वर्ल्ड रेडियो मस्ती 549-912-94। थैंक यू सो मच रीता मथुरा नोवेल फ्रांस से हैं आप, बेटी हैं शिल्पा और एक बेटी हैं यशना फ्रॉम कनाडा। रियली होप वो भी हमें सुन रही हैं और उनका नाम सुनकर खुश हो गई होगी। रीता फ्रॉम मिलानो थैंक यू सो मच। इंदिरा मोता ब्लॉन्श से रेशमा विमल अंजू कृषा केशव साथ में है मायशा तानिया नील एंड केशव के लिए कृषा के लिए मिस्टर बाबू अनुत्वा फ्रॉम कैथबोन पालमा से आपके पूरे परिवार के नाम। लता जी एंड अमिताभ बच्चन की आवाजों में यह है सिलसिला।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें।

क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: 92 रेडियो मस्ती
1: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: The best mix of music aapke liye, kabhi 70s, kabhi 80s, kabhi 90s. विनोद राठौर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड. कई दिनों से इनकी आवाज़ नहीं आई, तो चलिए मौका मिला, दस्तूर भी है तो हमने बस आपके लिए चला लिया. ये है चाहत फिल्म से लिया गया वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर, एक बार फिर आप सबके नाम. गुड आफ्टरनून एवरीवन.

ये नहीं हो सकता हाँ लेकिन आपके दिल में आपके घर में जरूर आ सकते हैं 1:32 हुए हैं थैंक यू सो मच हे विशाल फ्रॉम जुबॉय कैसे हैं माय डियर फ्रेंड कहते हैं प्लीज अगला गाना गुजार टू माय लवली वाइफ मालू स्वीट फ्रेंड सुरेखा वान आर्ट्स आर्ट्स आरती एंड टोल डियर वंस यही कहना चाहते हैं ना बस साथ देने के लिए थैंक यू सो मच जितने भी लोग काम पर हैं बोंकोहाश घर पर आराम फरमा रहे हैं धूप तो निकली हुई है ना तो बस आप एंजॉय कीजिएगा राह में किसी से मुलाकात हो जाए तो हेलो बोंजू नमस्ते कुछ भी कह दीजिएगा बस एक स्माइल किसी के चेहरे पर ला देंगे तो उनका भी दिन अच्छे से बीत जाएगा प्रीति टू हबी लेक उसाथिरे वाला गाना आपके नाम है मिष्टी हिमाक्षी रेशमा आशीष राम की सुन फैमिली सुल्फेनो वाकवा से कैसे हैं ठीक ठाक

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: हमेशा आप ऐसे ही जवान रहे, आपका दिल जवान रहे और ऐसे ही 5499-1294 पर अपने मैसेजेस भेजते रहे. वेरी गुड आफ्टरनून आपको पतिलाल देव, बिग ब्रो मनोज, किरोधर, साइलेश, संजीव और आपके लिए खास तौर से बिहारी सुया एंड पूरे परिवार कुंगुमा से. हेलो नीतू, नेक्स्ट गाना किन के नाम? ओके, आप हो शालिनी फ्रॉम पोर्ट्रीस. थैंक यू सो मच. रेशमा, गाना आपको अच्छा लगा? थैंक यू सो मच.

0: बहुत सारे गाने तो गाए नहीं है लेकिन जितने भी गाने गाए सब एवरग्रीन. दैट वाज सलमागा फिल्म से, सलमागा की आवाज में. थैंक यू सो मच. एक बजकर 52 मिनट फुबा बेम, वेल तुम हंसी मैं जवा वाला गाना आपको अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: कबूतर आ गया है और आते आते वो भी अपने पंख उड़ाते हुए चले जा रहा है. तो चलिए कबूतर के साथ नीतू भी उड़ती चली जा रही है. मुलाकात होगी अब कल वापस 12 से 2 के बीच इन रेट्रो रिदम हमारे बाद परी के साथ. बॉम्बे टॉकीज, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस आफ्टरनून अहेड. बाय बाय.

हम भी तो चले गए थे लेकिन वापस आ गए आपके लिए. शेला फ्रॉम गुडलैंड्स. बेटा श्रीकांत, बहू येशना, ग्रैंडसन है श्रीयान, साथ में सोहल, श्रीयेश और साइना, श्रीना, शालिनी, सोनाली, श्रेया, साहिल. ये तो टॉम ट्विस्ट हो गया भाई. थैंक यू सो मच. हाँ, टेक केयर, बाय बाय.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है। फॉर्मिलिटों प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जोलीझुंका का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं। पिछले मई महीने से फॉर्मिलिटों प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पुल बेहोंजे, जोआना

विहोंशे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल हैं। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को इसकी औपचारिक मांग की है। अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। सांसद वेरोनिक लुगोविन के साथ रोजिल के आजसू द्वारा पूछताछ की जा रही है। वे आज करीब 9:30 बजे वहां पहुंचे।

0: उसका परीक्षण किया गया है, इसमें गांजे के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने दो रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल दागे हैं और ये हमले कामयाब हुए हैं। वहां घना काला धुआं देखा गया है। इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं। मलबे के कारण न 3 घरों में आग भी लग गई। और भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है। कुछ दिनों की राहत के बाद अब मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रामजतन रोड बेजुकाप में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की कुमारी तारामती कालकी प्रसाद, कुमारी कालामत तारामती कालकी प्रसाद जो चंद्रावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के मकान रामजतन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांवबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे मोहा पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो वेल फ्रेंड्स स्टार्ट किया है इसी खूबसूरत गाने के साथ ओ सजनी रे। अब आपके लिए हम सवाल भी लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। 2:08 थर्सडे आफ्टरनून 6th of August, आई डू होप दैट ये थर्सडे आपका अच्छे से बीत रहा है। मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक बी टाउन की अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट सॉन्ग्स। सो वेल यहां पर जो गाना चलाया सजनी रे अरिजीत सिंह की आवाज में, दैट वाज अ रोमांटिक गाना टू स्टार्ट विद। और इसी से जुड़ा हमारा सवाल, आपको हमें बताना है ये जो गाना है कौन सी फिल्म से लिया गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी इसका बहुत ही आसान है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इनाम है वो आप तक आसानी से पहुंचे। सो सिंपल सा क्वेश्चन, ओ सजनी रे ये गाना जो है कौन सी फिल्म से लिया गया है। सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर, 5499-1294 पर, आपके पूरे नाम और पते के साथ। सही जवाब देने पर जीत सकते हैं आप 4 entry tickets, 1 food coupon फॉर जैन लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट दी उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। ज्यादा डिटेल्स थोड़ी ही देर में। अभी के लिए सिंपल सा क्वेश्चन, ओ सजनी रे ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है। ड्रॉप इन आपके सही जवाब 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट।

0: मस्ती।
1: सवाल दोस्तों सवाल पूछा था आपसे वो सजनी रे, ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है? एंड द राइट आंसर इज लापता लेडीज। यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, ऑलमोस्ट सारे सही जवाब, और लकी ड्रॉ के बाद कौन बनते हैं हमारे लकी विनर? आप है धनन राम रतन, आप है क्रिफ की ओर से, और दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब, बनते हैं लकी विनर। तो वेल धनन जी, दिया है आपने सही जवाब, खेला आपने एमबीसी राजस्थान वर्क्स के साथ, और जीत रही है आपने 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक एट एसबीआई सीसी पाई सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। साथ ही यहाँ पर आप एंजॉय कर पाएंगे इंटरनेशनल होम शॉपिंग, इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट शोज, साथ ही मैजिक शोज होने वाले हैं, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, कैनमा के शो होने वाले हैं, और बॉलीवुड जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं, एंड ऑल्सो फूड फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड, और ये सब आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल। इसे आपको एंजॉय करने के लिए जाना होगा एसबीआई सीसी पाई 12 से लेकर 16 अगस्त तक सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन आपको मिलती है, और इसे कलेक्ट करने के लिए आना होगा एमबीसी मंडे टू फ्राइडे। आप यहां पर आ सकते हैं सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक। जब आप यहां पर आते हैं, डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग। सो चलिए, जीतने के मौके मिलते रहेंगे। यह है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती, एंड अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज़।

0: 2 Radio Musti.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

So that was a beautiful track. और इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती. चलिए दोस्तों, कुछ खास कुछ स्पेशल थोड़ी ही दिनों में आपके लिए होने वाला है. सो बस ये सब जानने के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. अभी के लिए तो फुल ऑन तैयारियां चल रही है ताकि कुछ ही दिनों में एक स्पेशल सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आ सके. सो विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे बी टाउन की खबरों और आपके मैसेजेस डेडिकेशंस के साथ. अभी के लिए इट्स योर बॉम्बे टॉकीज़. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: FM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. मार्गरी हाइट्स से सभी कार्य तुरंत रोक देने की मांग की गई है. ये रियल एस्टेट कंपनी तमागा के ला तुगैल पहाड़ की ढलान पर अपने निर्माण कार्यों को विस्तार दे रही थी. रिवियानुआ जिला परिषद द्वारा उसे स्टॉप ऑर्डर दिया गया है. जिला परिषद के अनुसार इस ग्रुप के पास बिल्डिंग एंड यूज लैंड यूज परमिट नहीं है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है. संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है. फ्रो मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं. वे जुले जोंगा की जगह लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं. पिछले मई महीने से फ्रो मिलिटेंट प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पल बेहोंजे, जोआना बेहोंजे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल हैं. चेतन बबलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोखुल को इसकी औपचारिक मांग की. अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे. विदेश में भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है. कुछ दिनों की राहत के बाद अब मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. यहाँ तक कि उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाकों तक सभी जगहों पर

बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉ रोड बुबुआ सेंपिया में रॉ रोड बुबुआ

0: मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी देवी भट्टू के मकान रारोड बुबुआ सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कोस्तान सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Music is in the mix.
2: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स, ये है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं अभी के लिए. इट्स आफ्टरनून टाइम, थर्सडे की दोपहर, जहां पर आप कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ. मॉर्निंग टू नाइट आपके लिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स, यानी कि पुराने हो या फिर नए, सारा फ्लेवर आपको मिलता है ऑन रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स टाइम जहां पर हम कुछ लेटेस्ट गाने लेकर आते हैं. कुछ पुराने गाने भी होते हैं लेकिन होते हैं विद अ ट्विस्ट. सो सब कुछ आपको मिलता है राइट या हमारे इस प्यारे स्टेशन पर. म्यूजिक का फुल ऑन डोज आपके लिए. और अभी के लिए तो आपके बहुत सारे मैसेजेस डेडिकेशंस भी आ गए हैं ऑन 5499-1294. ऋषि विदेशी हमारा साथ दे रहे हैं. अगला गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर वर्किंग टुडे एंड आपकी बूढ़ी गर्लफ्रेंड जो बॉम्बू से है और सभी गुड फ्रेंड्स के नाम. एंड आई एम श्योर दैट योर गर्लफ्रेंड वो एक दिन आपसे काफी एग्री होने वाली है बिकॉज हमेश्योर आप उन्हें इतना मूडी कहते हैं. बट आई एम श्योर शी इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गर्ल जो थोड़े से नखरे तो दिखाती है. लड़कियों का तो ये अंदाज होता है. एंड आई एम श्योर शी इज सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग. अभी के लिए ऋषि जी फॉर यू एंड फॉर योर लवली गर्लफ्रेंड हम डेडिकेट करेंगे अगला गाना. विशिंग यू लोड्स ऑफ गुड विशेज एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस. साथ ही यहाँ पर रेडियो मस्ती का साथ दे रहे हैं अब्दुल एंड सायरा बानोस.

स्माइल के साथ आए हैं आप. तो चलिए अगला गाना आपके नाम. एंड यहाँ पर हो रहा है आफ्टरनून स्नैक्स यानी कि इट्स टी टाइम. और कहते हैं नाइस सिलेक्शन रेडियो मस्ती. प्लीज अगला गाना आप डेडिकेट करें और ये है फॉर यले शाम ऑफ सुरिनाम. साथ दे रहे हैं आप एंड एंजॉइंग योर टी टाइम. तो चलिए अगला गाना आपके नाम यलेश. एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार से आपने कनेक्ट किया है रेडियो मस्ती के साथ. तो अगला गाना बहुत ही प्यार से हम डेडिकेट करेंगे फॉर यू इक्वली गुजार फॉर ऑल शाम परिवार. साथ ही दोस्तों अगर ऐसे ही कनेक्टेड है not to forget your messages your dedications happening hamare magical number 5499 1294 par pari ka saath hai till 4 p.m.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों बी राउंड की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं अभी के लिए इट्स आफ्टरनून टाइम तीन बजकर 31 मिनट हो रहे हैं एंड टॉकिंग अबाउट एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बटवारा 1947 का प्रमोशन कर रहे हैं मुंबई में भी उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया था इस दौरान मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में फिल्म की कहानी किरदार और इसके पीछे की मंशा का जिक्र किया इसके अलावा फैंस से भी उन्होंने एक खास गुजारिश की है और उन्होंने कहा है दैट एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किरदार ठीक वैसे ही है जैसे उन्हें लिखा गया था और हमने कभी भी किसी चीज़ को न्यूट्रल करने या मौजूदा माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की ये बस वैसी ही कहानी है जैसी लिखी गई थी यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं सनी देओल का ये भी कहना है कि दर्शक फिल्म देखते समय इतना खो जाएंगे कि धर्म या राजनीति से जुड़ी बहस कहीं पीछे छूट जाएगी वही कहते हैं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये सब भूल जाएंगे आप इस सफर में इतने शामिल हो जाएंगे कि फिल्म देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बंटवारे का क्या मतलब था मुश्किल हालात में खुद के और अपनों के साथ खड़ा होना कितना ज़रूरी होता है ये इस फिल्म में बताया गया है और उन्होंने कहा कि जो उनके फैंस हैं जब इस फिल्म को देखें तो बस इस फिल्म का जो दर्द है उसे समझने की कोशिश करें सो वेल अभी के लिए तो सबके शानदार परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं जो इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है जहां पर हमने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम देखने वाले हैं प्रीति ज़िंटा को ऑन स्क्रीन एंड एज गॉर्जियस एज ऑलवेज शबाना आज़मी भी नज़र आने वाली है एक अहम किरदार में और वहीं सनी

0: देओल के फैंस सुपर एक्साइटेड उन्हें इस किरदार में देखने के लिए. सो दैट्स बटवारा 1947 जो होगी जल्द रिलीज. तब तक के लिए बस आप करें इंतजार एंड नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम. योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस नंबर आप जानते हैं 5499-1294 परी का साथ टिल 4 पीएम ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: You're listening to a Radio Mastee.

0: मस्ती
1: So well friends, it's 3:52. मैं हूँ परी आपके साथ and was it time to say goodbye. लेकिन जाते-जाते आपके messages, आपके dedications. कहते हैं the new version of छाप तिलक that was such a beautiful track and ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलाते रहेंगे हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं आप और next गाना आपके नाम Happy Thursday and बस Friday आ रहा है उसके बाद weekend. So have a wonderful time each and every day हो आपके लिए खास यही wishes हम पहुँचा रहे हैं आप तक. ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं आप and enjoying songs apni garma garam chai crepe banan ke saath you are dedicating agla gana ye hoga for all your students and sabhi colleagues ke naam lalita jitan aur sabhi parivar sabhi loved ones jo abhi is waqt jude hue hain from lavancha unke naam aap dedicate karna chahti hain agla gana so gana aapke naam sabhi parivar sabhi doston ke liye saath hi yahan par vakwa se hamara saath de rahe hain mr govind raghunandan so gana hoga aapke liye govind ji and I know it's your tea time so abhi apni garma garam hochi enjoy रहे हैं अपनी चाय के साथ विथ योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा सो गाना होगा आप दोनों के नाम हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7 आपके साथ बस गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाना चाहते हैं और चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय मेरे बाद आ रही है गिनी शालेकर योर रफ्तार वाइब्स उनका साथ निभाइए मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज जाते जाते ये गाना डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी थर्सडे Enjoy the songs, stay magical, stay musical, Radio Masti ke saath.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: टाइम चेक, इट्स 4 PM।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
3: आइए सुनते समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
8: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मार्गरी हाइट्स से सभी कार्य तुरंत रोक देने की मांग की गई है। ये रियल एस्टेट कंपनी तमाहें केला तुगैल पहाड़ की ढलान पर अपने निर्माण कार्यों को विस्तार दे रही थी। रिवियनवा जिला परिषद द्वारा उसे स्टॉप ऑर्डर दिया गया है। जिला परिषद के अनुसार इस ग्रुप के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था, इसी कारण ये स्टॉप ऑर्डर जारी किया गया है। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकते हैं। फोमिलिता प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जुलेजोंगा का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले MSM के एकमात्र सांसद हैं। पिछले मई महीने से फोमिलिता प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पुल बेहोंशे, जुआना बेहोंशे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को इसकी औपचारिक मांग की थी। सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ रोजिल के आदसू द्वारा आज पूछताछ की गई। वे आज करीब 9:30 बजे वहां पहुंची। 4 घंटों तक उनके साथ पूछताछ की गई। रियोनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे की तस्करी की जांच के सिलसिले में उनके साथ पूछताछ की गई, जिसके तहत उनके पति गुलशन गोविन और साथ में एक अन्य व्यक्ति रविंद्र चिमाजी को भी गिरफ्तार किया गया था। सांसद बेहोनिक लुगोविन की एक SUV को जब्त करके उसका

0: परीक्षण किया गया, इस समय गांजे के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है। विदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने दो रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल दागे हैं, वहां घना काला धुआं देखा गया। इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं, मलबों के कारण 3 घरों में आग भी लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.
2: सुनते रहो

बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती आपको सुनते ही रहना है, क्योंकि लेकर आते हैं आपके मनपसंद गाने 24/7 स्पेशली आपकी खिदमत में हम सब हाजिर हैं। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। सो हाउ आर यू माय लवली लवली म्यूजिक लवर्स? एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड नाउ। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक डे भी होता है, लेकिन जब अच्छे अच्छे म्यूजिक आप सुनते हैं ना वाइल गोइंग बैक होम आफ्टर वर्क, तो मूड अच्छा हो ही जाता है। सो ऑलरेडी 4:08 थर्सडे द 6th of August 2026, विशिंग ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट थर्सडे आफ्टरनून अहेड हमारे साथ। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में एज यूजुअल धमाकेदार गाने सुनाएंगे आपको, जस्ट टू पंप अप अ लिटिल बिट योर मूड, एंड एज वेल स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट्स गुरु अरविंद के साथ।

0: और ट्रैफिक अपडेट्स, अ लवली गेम आई हैव अ कैडो फॉर यू ऑफ कोर्स, एज यूजुअल खाली हाथ नहीं आती हूं मैं, एंड ऑफ कोर्स योर फैशन टिप्स एंड योर डेडिकेशंस, इतने सारे चीज सिर्फ और सिर्फ रफ्तार वाइब्स में, जहां पे गिने आपको लेके जाते हैं आपके फिल्मी राइट्स पर। तो चलिए जी, दैट्स योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड यू आर लिसनिंग टू
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए आप तोहर अपिकाशों कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
1: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
2: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na 16 ans ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir du 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Beau Climat, La Flora.
0: RM2
3: Radio

0: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन और ऑलवेज बाय योर साइड गिनीशा इन योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स। चार बजे से लेकर सात बजे तक आपका साथ दूंगी ऐसे धमाकेदार गानों के साथ। तो चलिए टू ऑल दोस जो अभी ऑफिस से निकल चुके हैं, लैपटॉप बंद करके अपना पीसी बंद करके निकल चुके हैं या बैग अभी उठा रहे हो कंधे पे डाल के, आप सोच रहे हैं कि अभी जाना है, बस पकड़ना है, घर पे जाना है, अरे दिल छोटा नहीं करते मेरी जान, बस स्माइल कर लीजिए, थिंक पॉजिटिव एंड यू कैन सी एवरीथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन टू यू। एंड फिलहाल के लिए आई हैव गॉट अ गेम। जी हाँ, आई हैव अ गेम टू किक स्टार्ट विद यू, यानी कि आई हैव गॉट अ कैडू, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज यू आर गोइंग टू प्ले विद राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। यस, दिस गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। यू कैन प्ले विद एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स लिमिटेड एंड विन एक्साइटिंग प्राइसेस। सो राइट नाउ यू कैन स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन चार एंट्री टिकट्स एंड वन फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। शुरू होने वाला है फ्रॉम द 12th ऑफ अगस्त टिल द 16th ऑफ अगस्त एट एसबीआईसीसी एट पाय। सुबह खुलेंगे 10 बजे, रात के 9 बजे तक, यानी कि यू कैन डू लेट नाइट शॉपिंग एंड वहां पे जाके यू कैन एक्सपीरियंस 5 days ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन फीचरिंग। इंटरनेशनल होम शॉपिंग होंगे, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल। अरे मेरी जान, इतना सब कुछ एक ही जगह पर, यू कैन गेट इट, सो व्हाई नॉट। फिलहाल के लिए अगर आप वहां पे जाना चाहोगे एंड यू वांट टू गेट, यू वांट टू विन दिस टिकट्स फॉर फ्री, हम पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल, आपको देना है जवाब ऑन 5499 1294 पर। गिव मी द राइट आंसर राइट नाउ राइट अवे जस्ट बाय टेलिंग मी दिस डायलॉग इज टेकन फ्रॉम व्हिच मूवी।
1: आज अगर मैं गया तो कल नहीं आऊंगा।
2: तुम आओगे।
1: बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते, उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते।
0: बिल्कुल जी, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते, इसे तो हम सवाल पूछ रहे ताकि आप हमें सही जवाब भेजे ऑन 5499 1294 पर। सही जवाब फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ सेंड इट टू मी राइट नाउ राइट अवे एंड जस्ट ट्राई योर लक टू विन दिस अमेजिंग प्राइजेस जो हम आपको दे रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। फिलहाल के लिए 4:22 हो चुके हैं। टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, हेलो जी मिस्टर ड्राइवर, ड्राइव केयरफुली, और ये गाना थोड़ा सा आपके मूड को लिफ्ट कराने के लिए।
3: RM2 Radio Mystique.

0: स्मार्ट बॉय गाड़ी मांग रहे हो गाड़ी जानी सामी जो भी हो सुनो ऐसी कोई गाड़ी न बनी थी न बनी है न बनेगी जिसमें तुम फिट हो सको
1: दे दे चेक बना दे फिर हम दे नार दे

0: OMG, what anima, you know, jete gaane. Aur yahan pe studio mein to hum sab milke naach rahe hain, ga rahe hain. Such a lovely vibe. Kuch gaane aise hote hain na, it really brings back the vibe and the good mood. Aur hum chahte hain ki aap bhi gaadi chala rahe ho to koi baat nahi, man mein aap to naach hi sakte hain. Aur agar filhal aap ghar pe ho, so why not table ko hata dijiye aur chair ko hata dijiye. Just make some space and keep on dancing hamare saath on RN2 Radio Masti. तो चलिए जी 4:34 हो चुके हैं. हाँ जी, सांस फूल गया नाचते नाचते. तू ही तो मेरा दिलदार है, आय हाय, टेकन फ्रॉम द मूवी हनीमून ट्रैवल्स. और फिलहाल के लिए चलिए जी, पूछा गया था एक सवाल और अभी के लिए इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि आज का लकी विनर कौन है. एंड यस, हमने आपको सुनाया था ये डायलॉग.
1: आज अगर मैं गया तो कल नहीं आऊंगा.
2: तुम आओगे.
1: बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते. उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते.
0: What a beautiful dialogue. अगर मोहब्बत है हमसे तो पीछा हम नहीं किया करते, इजहार वो खुदा के करे. जी हाँ, taken from the movie Fana. Yes, I've got so many right answers and even wrong answers. The right answer is taken from the movie Fana. और आज वैसे ही lucky draw में कौन है आज का lucky winner? नाम निकल आया है प्रवीण माकुल का, जो रहते हैं मौसलमा लंदन टाउन प्लान दे पपाई. So Praveen ji, wishing you lots of good wishes. Congratulations to you. Thank you so much for participating. Aaj aapka number nikal hi aaya, so luck is by your side today. And you are winning 4 entry tickets and 1 food coupon for the Gents Little India Shahi Thali at the Utsav India Shopping Carnival jo hone wala hai from the 12th to the 16th of August at SVICC at Pai subah 10 baje se lekar raat ke 9 baje tak. So congratulations to you, my dear. And there will be someone who's going to call you so that you can come here with your ID card and collect your tickets. So congratulations to you and thank you so much to all those jinhone aaj participate kiya hai. Aur filhal ke liye Shaan aur Kailash Khair ki aawazon mein I've got you this beautiful masterpiece. Yes, a beautiful song. To zara dil ko tham lijiye. It goes out to each and everyone who are truly, madly, deeply in love. Here we go. Let's enjoy it.

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। रेडियो मसी जस्ट वन आवर चुकी है टाइम 4:42 हो चुके हैं।
1: RM2 Radio Musti Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News
1: Radio Musti in the mix.
0: स्पोर्ट्स गुरु जो है ऑलरेडी इन द स्टूडियो में आ गए हैं, तो उनका स्वागत है इन दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स न्यूज। तो आप क्या लेकर आए हैं आज हमारे लिए अरविंद जी?
3: एज यूजुअल द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून।

0: जो मस्त लिसनर्स, सो यूएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के मैच आज खेले जाएंगे और इनमें काफ़ी ऐसी ऐसी टीमें हैं जो कुछ सीजन पहले चैंपियंस लीग में भी खेलते थे, जैसे बेनफिका। बेनफिका का मुकाबला आज हार्ट्स से होगा, फिर टुन टीम अगेंस्ट विकिंगू, पीएओ के सालोनिका अगेंस्ट अंदेलेक, ये भी इंटरेस्टिंग मैच होगा, साल्सबर्ग पाफोस, रेड इम्स ओमोनिया, लेच अगेंस्ट काय, हाड्रेक बेसिकतास, मकाबी तेल अवीव, सीएसके मोस्कू, ये भी इंटरेस्टिंग मैच होगा, यागेलोनिया रेंजर्स और कूप्स क्रायोवा टीम के खिलाफ खेलेगी। फिर यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में भी काफ़ी मैच हैं, अगर लिस्ट लेना शुरू करूं तो कल हो जाएगा, कल सुबह रिजल्ट ज़रूर देंगे। और इंग्लैंड के लीग कप के फर्स्ट राउंड में ब्रिस्टल सिटी विल बी अगेंस्ट वॉल्सॉल, फ्रेंडली मैच भी काफ़ी खेले जाएंगे, इनमें मोनाको रेताफे, फ्लोरेंटिना डेपोर्टिवो, और काफ़ी फ्रेंडली मैच समाप्त भी हो गए हैं अन्य देशों में। इतना कुछ इन्फांटिनो आज सुबह बता रहे थे ही सॉरी फॉर एरर्स, लेकिन अभी तक वो फीफा का प्रेसिडेंट हैं, उसने अपना मेया कुल्पा किया कि जो प्राइवेटाइज करने का जो प्लान था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने सॉरी मांगी और अभी तक वो प्रेसिडेंट है। और इधर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी का खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियन रोड्री कहाँ जाएगा, ए डिसीजन टू बी मेड, जबकि मोहम्मद सलाह का भव्य स्वागत किया जा रहा है इन टर्की। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की टीम के जो खिलाड़ी हैं और स्पेन के भी, धीरे धीरे वे अपने अपनी टीमों में आ रहे हैं। इधर स्पर्स अभी तक गाकपो के पीछे हैं, ए वांटेड मैन, लेकिन क्या लिवरपूल गाकपो को जाने देगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि लिवरपूल दो खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है पारी सैन जर्मेन से, तो अगर ये लोग आ गए तो शायद गाकपो को जाना होगा या फिर लिवरपूल उसको खरीद, उसको बेचना चाहेगा। इधर एवर्टन, एवर्टन ने नोगार्ड को साइन किया है फ्रॉम आर्सेनल, और रियल मैड्रिड ने विनिशियस जूनियर को एक इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है ताकि वो क्लब छोड़कर न जाए। और भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट टीम अभी श्रीलंका में है, वहां पर दो टेस्ट सीरीज होंगे, एक टू मैच भी निर्धारित है। और लोकल स्तर पर वॉलीबॉल, अभी इसी समय वॉलीबॉल मैच चल रहा है इन मैडागास्कर फॉर द नेशंस कप, ये हमारी टीम अंडर 18 टीम खेल रही है अगेंस्ट रेनियन आइलैंड, पहले मैच में हमारी टीम की जीत हुई थी। सो दैट्स इट, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, आई विल कैच यू टुमारो मॉर्निंग फॉर द रिजल्ट्स।
1: थैंक यू सो मच, आई नोटेड।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: तो चले जी, टाइम तो बीता चला जा रहा है, अभी 4:53 हो चुके हैं। गणेश ऑन द माइक आपका साथ देने के लिए इन योर रफ्तार वाइब्स एंड दैट्स योर फिल्मी राइट्स। ऑफ कोर्स फिल्मी बातें तो हम कम करते हैं लेकिन फिल्मी गाने तो अच्छे सुनाते हैं ना आपको। एंड आई होप कि हमारे आज के प्लेलिस्ट में कोई ऐसा गाना हो जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो एंड दैट यू आर लविंग द सिलेक्शन। जी हाँ, टू ऑल दोस हू आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग एंड जी हाँ, सीट बेल्ट लगा के हमेशा ड्राइव कर लिया करो एंड डोंट फोकस ऑन योर फोन। फोन को साइड में रख लीजिए, नेवर अटेंड एनी फोन कॉल्स व्हाइल ड्राइविंग, इट्स नॉट सेफ। एंड जी हाँ दोस्तों, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए क्योंकि वी हैव गॉट यू सच ब्यूटीफुल एंड लवली गाने। एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल लवली सोल्स जो ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, आराम से बैठ जाइए, टेक आउट 15 मिनट्स ना काफी आपके लिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अच्छा सा चाय पी लीजिए, चाय का प्याला ले लीजिए या इफ यू लव कॉफी हैव सम कॉफी एंड जस्ट चिल एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे न्यूज इन इंग्लिश एंड देन द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज।
1: RM2 Radio Mustang.

0: Integrated Customs Clearance Center, ICCC, le Chalon Road, Plaine-Magnon. Pas oublié, dos de sang du côté de l'aéroport et ICCC, le vendredi 7 août de 8h à 16h.
1: RM2 Radio Musti.
2: Raftar Vibes. Filmy Rides.
1: RM2 Radio Musti.
3: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti. RM2.
4: Traffic update.
5: वेल गाइस 5:16 मिनट हो चुके हैं और फिलहाल के लिए लेके जाएंगे आपको स्ट्रेट अवे फॉर योर ट्रैफिक अपडेट्स टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग. जी हां, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए बिकॉज नाउ राइट नाउ आई गोना टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑन द रोड. वैसे कुडा नोट यानी कि जो मेन कैपिटल है, अगर मैं देखूँ, अगर आप कुडा के जो राउंड अबाउट से निकल रहे हैं नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, तो आई जस्ट हैव टू टेल यू कि इट्स अ जाम राइट नाउ. वहां पे हमेशा इस वक्त पीक आवर्स पे तो जाम रहते हैं. एंड इवन साउथ की तरफ अगर आप जाओगे, इट्स मोर जाम राइट नाउ. गाड़ियां चल रही हैं लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट. प्लस डाउन में भी एंड टू द सिटी सेंटर में भी आई कैन सी गाड़ियां बहुत हैं अभी जो निकल रहे हैं पोर्ट लुइस से. एंड जो पोर्ट लुइस के जो प्लेन लुजों की रोड मेन जो मोटरवे है, अगर साउथ की तरफ आप जा रहे हो सो इट्स मूविंग बट वेरी स्लोली. एंड नॉर्थ की तरफ अगर जा रहे हो सो इट्स मूविंग क्वाइट नाइसली राइट नाउ. एंड राइट नाउ अगर हम देखें ऑन ट्रैफिक वॉच, पोर्टविश यानी कि नॉर्थ की तरफ तेहूज का जो फ्लाई ओवर है वहाँ पे राउंड अबाउट पे भी इट्स नॉट येट अ जाम. काफ़ी गाड़ियाँ हैं लेकिन आराम से चल रही हैं. एंड इवन हुद्दे पॉम्पलमूस में भी है. सो अभी लेट्स टेक यू स्ट्रेट अवे टू रेजुई एंड एबेन. रेजुई में वेल आई कैन सी लॉट ऑफ कार्स, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो पहुँच चुकी हैं वहाँ पर. एंड इट्स मूविंग बट वेरी स्लोली है क्योंकि पीक आवर्स में एवरी आफ्टरनून ऐसा ही होता है. And even to the for the Eben motorway. And Bubasai and Rosehill ka jo junction hai, just like every afternoon hum hamesha aapko kehte hain ye road kafi hai jam rehte hain peak hours mein to aur bhi zyada. So you just have to be patient, extra time lekar chaliye. And Phoenix motorway and Saint Jean, I can see right now a lot of cars already hitting the road there and moving lekin slowly. Abhi bhi gaariyan jo hai it's moving but slowly. Highlands motorway par bhi both sides gaariyan bahut hai but moving slowly slowly. Abhi tak thank God ki koi accident ki khabar nahi aayi hai, report nahi aayi hai, so that's very good. So to all those jo abhi gaari chala rahe hain, so please keep on driving carefully and keep on listening to your number one radio station. And well, it's your Raftar Vibes.
1: Ladies and gentlemen, attention please. RM2 Radio.

Such a beautiful remake of this beautiful and lovely show, a song, Jihan Das Urvashi. And it goes out to all beautiful ladies, jinka naam hai Urvashi, aur hume sun rahi hai right now on RMT Radio Masti. 5:29 ho chuke hain, kahan tak pahunche mere jaaniman, yani mere pyare pyare listeners. I really hope you guys are vibing with me on this lovely Thursday afternoon. It's already the 6th of August. To all those celebrating their birthdays, I just want to wish you a magical birthday right now on Radio Masti. Lovely couple celebrating out their wedding anniversaries. Lots of love and happy togetherness to you, my dear. Aur koi bhi agar khushiyon ki baat hai, aap hamare saath share karna chahoge, the number is 5499124 par. Yale sham, kaise ho? The next one goes out to you. And चलिए जी, I have a ये अगला गाना स्पेशली फॉर यू माय डियर. आपकी मम्मा रति, पापा किशन एंड भाई लविश, ओ जस्ट वी के दी एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम देशना. हाय देशना, थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट फॉर सेंडिंग मी सच अ क्यूट मैसेज. वी हैव जानू मेरी जान, यानी कि ये है जाना, जाना है फ्रॉम फ्लैग. और स्वीट सी बातें जो मैं करती हूँ आप सुनते रहते हो, थैंक यू सो मच. तो ये अगला गाना स्पेशली आपकी बेटी रीमा के लिए. वी डू हैव जीनीता, आशिष्टा, अंसनी, सिल्विया और यूवी कृषि, शिव सोहन परिवार ऑफ फ्लैग. लव यू माई स्वीट हार्ट एंड आई लव यू टू. हस्बैंड का नाम है अवेश और डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना स्पेशली फॉर यू, आपकी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ डी यहाँ की तरफ से. एंड वी डू हैव आपकी टू प्यारी बेटियां जो है मेघना एंड योशाना, लाइक इज अ प्लेइंग एंड आप खाना बना रही हैं. यू आर फ्रॉम पोबला, सो कुहाज टू यू फॉर इन द किचन माई स्वीट हार्ट. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. एंड यस, अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन कुकिंग राइट नाउ, सो यू कैन शेयर योर मेन्यू ऑन 5499124. Hey Veena, gine you, wow, aapne play kiya mera favorite gana. Yes, aur wo Sumi ka bhi favorite gana tha. So Sumi, that was specially for you as well. Hey my sweet darling, my ginu, aye hai itne pyar se jab aap bolte ho na ginu darling, to dil machalta hai mera. So darling sweet aur Ravish, Prisha, Lavishana, padu families, ye agla gana aapke liye. 5499124 par send me your dedications.

0: लवली वॉइस ऑफ सुखबीर आप लोगों के लिए। ओए होए शावा मेरी जान है, क्या बात है, सच अ लवली सॉन्ग। ओए बल्ले बल्ले चकड़ी फटे। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। 5:43 हो चुके हैं। फैशन टिप्स अभी चाहिए या नहीं, चलिए लेट्स मूव ऑन टू इट।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: OMG Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
0: चलिए जी, इजी विंटर फैशन टिप्स टीन्स के लिए लेकर आई हूँ आज। हमेशा बोलते हैं जेंट्स के लिए, जेंटलमैन्स के लिए, आपके लेडीज के लिए, लेकिन हम ये जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे भूल सकते हैं। सो टीनेजर्स ध्यान से सुनिए। ले रोइंग जो है इज द की। सो टी शर्ट के ऊपर हुडी और उसके ऊपर डेनम या पफर जो जैकेट है वो पहन लीजिए, स्टाइलिश भी लगेगा और वार्म भी। न्यूट्रल कलर्स, वन ब्राइट कलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है, यानी कि ब्लैक ग्रे व्हाइट के साथ एक पॉप कलर यानी कि रेड ब्लू ग्रीन ऐड करो तो ट्रेंडी लुक जरूर आएगा। और स्नीकर्स या बूट्स क्या पसंद करते हो आप? व्हाइट स्नीकर्स हर आउटफिट के साथ अच्छा ही तो लगता है, और ठंडी जगह हो तो बूट्स

0: बेटर ऑप्शन है. एक्सेसरीज में मत भूलना बीनी स्कार्फ एंड ग्लव्स. सिर्फ वार्म नहीं आउटफिट को भी कूल बना देते हैं और आजकल तो बहुत ही फैशन में है. सो कंफर्टेबल बॉटम चूज करो. जीन्स कार्गो पैंट्स या जॉगर्स विंटर के लिए परफेक्ट होता है. ओवरसाइज स्वेटर्स. यस आई नो आजकल हम देखते हैं सारे बच्चे जो है ना ओवरसाइज ही पहनते हैं और ओवरसाइज जो नीट स्वेटर्स होते हैं कम्फी भी होते हैं और फैशनेबल भी. और फैब्रिक पे जरूर ध्यान देना. वुल फ्लीस या थर्मल वेयर यूज करो ताकि ठंड से प्रोटेक्शन मिले. फिट मैटर्स. बहुत लूज या बहुत टाइट क्लोज ये एक्चुअली आप उसको बैलेंस कर सकते हैं. सो वेदर चेक करो. अगर रेन है तो ज़रूर वाटरप्रूफ जैकेट लेकर जाना. और कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट स्टाइल. जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं जो आउटफिट आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराए वही सबसे बेस्ट फैशन चॉइस होते हैं. सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: You're listening to RM2 Radio Masti. RM2 Radio Masti.
1: Well guys, check your time. 5:56 हो चुके हैं. थोड़ी देर में हम भरेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर. उसके बाद the good music continues just between you and me on RM2 Radio Masti.
2: सुनते रहो.

0: 6 बजे हैं।
1: 809
0: सभी को नमस्कार। सैम कालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जोले शोंगा ने आज विपक्ष नेता के पद से और आदरण जुवाल ने विपक्ष के व्हिप के हैसियत से इस्तीफा दे दिया। आज दिन के दौरान उन्होंने अपना त्याग पत्र गणराज्य के राष्ट्रपति को सौंपा। गांजे की तस्करी के मामले में आरसू के जांचकर्ताओं ने पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से लगभग 4 घंटों तक पूछताछ की, उन पर कोई आरोप दर्ज नहीं। ब्लैक रिवर जिला परिषद ने मॉगरी हाइट्स को अपना काम रोकने का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं और वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा का उल्लंघन कर रहा है। विदेश में एल नीनो की घटना दुनिया भर में भूखमरी और समस्या और बढ़ा रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 2027 के आखिरी तक लगभग 29 मिलियन और लोगों के गंभीर खाद्य सुरक्षा की चपेट में आने का खतरा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश समाचार विस्तार से। जोले शोंगा ने आज विपक्ष नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। आज दिन के दौरान उन्होंने अपना त्याग पत्र गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को सौंप दिया। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब फोमिलिता प्रोग्रेसिव ने राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पद के लिए चेतन बाबूलाल का नाम प्रस्तावित किया है। आदरण जुवाल ने भी विपक्ष के व्हिप और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा। अपने पत्र में आदरण जुवाल ने कहा कि पीएससी की अध्यक्षता करने उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों, स्पीकर और उनके दफ्तर के कर्मचारियों को भी आभार जताया। ये इस्तीफा फोमिलिता प्रोग्रेसिव द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति को भेजे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष नेता के पद की मांग की है। जानकारियों के मुताबिक उनकी पार्टी ने विपक्ष के नए नेता के लिए चेतन बाबूलाल का नाम सामने रखा है। वे इसके लिए जोले शोंगा की जगह लेंगे, जो 2024 के आम चुनावों के बाद से ये पद संभाल रहे थे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: MMMC अपना त्याग पत्र देने के बाद पोल बेरांजे, जोआना बेरांजे और चेतन बाबूलाल ने 14 अप्रैल से विपक्ष की सीट ग्रहण की। फोमिलिता प्रोग्रेसिव के गठन से पहले ही विपक्ष में इनकी संख्या अधिक रही, तभी ये विपक्षी नेता के पद की मांग कर सकते थे। लेकिन 4 महीने बाद 5 अगस्त 2026 की रात्रि को उनके द्वारा राष्ट्रपति से ये औपचारिक मांग की गई। गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति राव बंधन कहते हैं,
3: quand l'élection est finie, il y a des députés qui disent best loser.
2: चुनाव के बाद

बेस्ट लूजर सांसद विपक्ष में रहे राष्ट्रपति ने जो लेजोंगाओ को विपक्ष नेता नियुक्त किया जिनका अनुभव है और एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। बाद में एक और सांसद ने इस्तीफा देकर निर्दलीय के रूप में विपक्ष में बैठा। तीन सांसद तीन अलग अलग पार्टी के किसी का बहुमत नहीं था। अप्रैल में अलगाव के बाद पुल बेरांजे जोआना और बाबूलाल विपक्ष में गए लेकिन उनका

0: अदल स्थापित हुआ, संसद छुट्टी पर है, जब कार्य दोबारा शुरू होगा तो उनका अधिकार बनता है कि वे विपक्ष नेता का पद संभाले। मॉरिशस गणराज्य के संविधान की धारा 73 के तहत विपक्ष नेता की नियुक्ति का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुसार दल के लीडर को विपक्ष नेता नियुक्त किया जाता है। 3 सांसद हैं, अब वे फैसला लेंगे कि किसे नेता नियुक्त करना है। राष्ट्रपति स्पीकर से सलाह मशवरे करने के बाद पार्टी की इच्छा के अनुकूल ये तय करेंगे कि विपक्ष नेता कौन होगा। यदि वे चेतन बाबूलाल को बनाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मॉरिशस में इस तरह की स्थिति नई नहीं है। 2019 से 2024 के बीच विपक्ष नेता का पद 4 दफा बदला गया था। लेबर पार्टी के डॉक्टर अरविंद बुलेल ने 2 बार, जबकि पीएमएसडी के सावियर जुवाल और लेबर पार्टी के शकील मोहम्मद ने 1-1 बार इस पद को संभाला था।
1: गांजे की तस्करी के मामले में आज सुबह जांचकर्ताओं ने पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। उन पर कोई अस्थायी आरोप दर्ज नहीं हुआ है। ये पूछताछ उनसे उनके पति गुलशन गोविंद से जुड़ी गांजे की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। गुलशन गोविंद अभी भी हिरासत में है। सुअर पालन सेक्टर के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए पालकों और अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी के सदस्यों के बीच एक बैठक लगी। इस समिति का काम इस क्षेत्र के लिए टिकाऊ समाधान तलाशना है। पिछले साल फरवरी महीने में बनी इस समिति ने आज 6 अगस्त को हरिलाल बागजी हॉल में बैठक लगाई। किसानों के पास कृषि उद्योग मंत्रालय को अपने प्रस्ताव सौंपने के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: मॉरिशस में वर्तमान में 466 पालक हैं और देश में लगभग 24,000 सुअरों का पालन किया जाता है। इनमें से 17,700 का पालन निर्धारित क्षेत्रों में, जबकि 6,300 का पालन निर्धारित क्षेत्रों से बाहर होता है। पोर्ट्रीस में आयोजित एक बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया।
2: C'est le problème qui nous a, c'est un nouveau système de drain pour Saint-Martin, de canalisation, que demain après-demain, si nous avons une situation, nous sommes capables de vivre comme un trottoir, comme ça, nous nettoyer nous-mêmes.
3: C'est une grande souffrance qui m'a éleveur dans le sud, qui est passée depuis des années. Ce qui veut dire, c'est pas le nouvel mental, mais c'est au niveau du système, parce que tout panneau ici qui vient visiter nous, nous raconte nos problèmes, mais non, on n'est pas monté.
0: फरवरी में गठित अंतर मंत्री समिति खास रूप से सैमौते में पाए जाने वाली समस्याओं पर गौर कर रही है। साथ ही इनके अपशिष्ट को बायोगैस और बिजली में परिवर्तित करने की संभावना पर भी एक अध्ययन शुरू किया गया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दा सबसे अहम रहता है, खास रूप से अपशिष्ट का निपटारा और हाइजीन से जुड़े मुद्दे चिंताजनक रहते हैं।
4: Primordial et ce qu'on appelle développement soutenu.
0: मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं, पर्यावरण का पहलू महत्वपूर्ण है, टिकाऊ विकास होना चाहिए, सैमौते में अपशिष्ट का निपटारा होना चाहिए, वहां की नालियों की मरम्मत होनी चाहिए। कृषि उद्योग मंत्रालय को अपनी मांगे और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए पालकों को 15 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
1: मर्गरी हाइट्स को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया गया है। ये रियल एस्टेट कंपनी देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित तमाहे के लातुरेल पहाड़ की ढलान पर अपनी निर्माण पर योजना बढ़ा रही है और अब ब्लैक रिवर जिला परिषद की तरफ से उसे ये काम रोकने का आदेश दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है और वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) का उल्लंघन कर रही है। चला विस्तार इस रिपोर्ट में सुनिए।
5: दक्षिण पश्चिम में तमाहे के लातुगैल पहाड़ी की ढलान पर निर्माण कार्य कर रही रियल एस्टेट कंपनी

0: कंपनी मॉकरी हाइट्स को फिलहाल अपना काम रोकने का आदेश दिया गया है। ब्लैक रिवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है। परिषद का कहना है कि कंपनी स्थानीय कानून का उल्लंघन कर रही है, इसी वजह से कंपनी को नियमों का पालन करने का नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से राकेश गुड़िया बताती है, जब निर्माण के लिए परमिट नहीं होता तो ये नोटिस जारी किया जाता है। इसके तहत तुरंत काम रोकने का आदेश दिया जाता है और परमिट के लिए मांग सुपुर्द करने को कहा जाता है। अगर मंजूरी मिल गई तो 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो अदालती कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाता है। ब्लैक रिवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष हेमराज ओटू का कहना है कि विकास जरूरी है लेकिन कानूनों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, खासकर ऐसे समय में जब इलाके को जलवायु संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हम स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। किसी भी गैर कानूनी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पक्षों और संस्थाओं के नियमों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य के लिए सभी पहलू का सख्ती से पालन करना होगा। इसकी वजह से औरों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मॉकरी हाइट्स को निर्माण की अनुमति लेने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय सीमा में अनुमति नहीं मिलती तो निर्माणाधीन विला को गिराने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। उधर मॉकरी हाइट्स के प्रतिनिधि का कहना है कि उन्हें अब तक काम रोकने का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है।
1: Two decades of partnership, a future of opportunity. ये विषय मॉरिशस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बीच सहयोग के 20 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया। इस सिलसिले में सोमवार को बागातेल के वाला होटल में विशेष समारोह का आयोजन हुआ।
2: जून 2026 में मॉरिशस के सदस्य बनने के बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने देश में प्रवासन शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रवासन नीतियों के निर्माण में सहयोग, डायस्पोरा की भागीदारी को बढ़ावा देना और अन्य कई पहल शामिल हैं। मॉरिशस के साथ सहयोग के ये 20 वर्ष IOM की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए IOM की प्रमुख आलिया हिर्जी कहती हैं, हम प्रवृत्तियों को समझ सके हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विदेश में डायस्पोरा की क्या स्थिति है और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है। हम प्रणाली मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो वीजा या परमिट से संबंधित हो। हम सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर। इस अवसर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक भी मॉरिशस पहुंचे हैं। फ्रांस सेलेस्टिन कहते हैं, मॉरिशस को प्रवासियों की जरूरत है लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बजाय कि लोग कभी भी और किसी भी तरीके से यहां आए। इस प्रक्रिया से सरकार फैसला ले सकती है कि कब कितने लोग आ सकते हैं और वो भी स्थानीय लोगों की रक्षा करते हुए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रवासन के क्षेत्र में मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां होंगी। मॉरिशस उन देशों में शामिल हैं जिन्हें विदेशी कामगारों की आवश्यकता है। हम कानूनी रूप से आने वाले उन प्रवासियों की ओर से समस्याओं का सामना करते हैं जो अपने ठहराव को बढ़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
3: Pour capable adresser le problème de ban immigration qui nous gagne.
4: Mauritius was at the time in 2012 one of the pilot countries to really make these linkages.
2: संगठन का ये भी मानना है कि प्रवासन के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही मानव गरिमा को पूरा सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1: इस साल के घुड़दौड़ सीजन में घोड़ों के आयात का मुद्दा भी चर्चा में है। इस विषय पर बुधवार को पोटली में MTCGC के मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई। संस्था के अध्यक्ष संतोष गजेंद्र ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में क्वारंटीन से जुड़े वजहों से हुई देरी अब इस सप्ताह के अंत तक दूर होने की उम्मीद है। इस दौरान घुड़दौड़ से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी बात की गई। अब चलिए एक सामान्य से हटकर विषय पर चर्चा

0: चाहल में घर के कामों को लेकर रजछिरी बहस के बीच एक किशोर ने अपने मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। स्थानीय अखबारों में छिपी इस हालिया घटना की खबर ने घर पर बच्चों और माता पिता के की भूमिका पर जिम्मेदारियों को लेकर बहस को हवा दी है। अध्ययनों से पता चला है कि घर के कामकाज का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान हो। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में
1: घर के काम को लेकर माता पिता और बच्चों के बीच अलग अलग राय होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक अखबार की खबर के बाद यह विषय फिर चर्चा में है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता घुरा का कहना है कि बच्चों से घर का काम कराया जा सकता है, लेकिन ये उनके अधिकारों और उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए होना चाहिए।
2: Bien fait la part des choses entre droit et responsabilité. Et parents aussi disent bien comprendre ça.
1: अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। हम बाल अधिकार कानून के अनुरूप चलते हैं। इसके तहत ये स्पष्ट है कि बच्चे घर के कामों में भागीदार हो सकते हैं, इस तरह उनका विकास भी होता है। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का परिवार के कामों में हिस्सा लेना भी उतना ही जरूरी है।
2: Ça contribue justement.
1: घर के कामों में शामिल होने से बच्चे का विकास होता है, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी वे मजबूत होते हैं। ये जीवन जीने की कला है, इससे पारिवारिक संबंध सशक्त होते हैं और बच्चे आत्मनिर्भर भी होते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ही जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। बेशक बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से काम देना चाहिए, नहीं तो ये एक अन्याय होगा। कई अध्ययनों में ये भी सामने आया है कि जब घर के काम आपसी समझ, बातचीत और सम्मान के साथ बांटे जाते हैं तो परिवार का माहौल बेहतर और खुशहाल बना रहता है।
0: विदेशी समाचारों में एलनीनो की घटना दुनिया भर में भूखमरी की समस्या और बढ़ा रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 2027 के आखिर तक लगभग 49 मिलियन और लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है और इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी इस समस्या से निपटने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही हैं।

स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं और पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी मौसम बरसाती रहेगा, खासकर पूर्वी इलाकों पर बादल घिर रहेंगे और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। और हवा 15 से 20 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसके अलावा मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में एक एंटीसाइक्लोन विकसित हो रहा है, जिस वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और न्यूज विभाग तथा तकनीकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पांचू रोड स्टैनली रोजिल में 79 साल की 79 years old की मिसिज बीबी रशीदा अब्दुल हकीम पैदाशी नाम नबी की मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान पांचू रोड स्टैनली रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। मोसलमान बस सीट थोसे क्यूपिप में 72 साल की 72 years old के श्री क्रियाशक्ति कुमार द्रुपद राव भूकन श्री क्रियाशक्ति कुमार द्रुपद राव भूकन जो कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2:30 बजे मोगा फ्यूनरल सेंटर रॉ रोड पिछित्रिव्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। एवेन्यू बेंगाली सुदना काथोबोन में 76 साल के 76 years old के श्री विनोद जयकरण की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान एवेन्यू बेंगाली सुदना काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रॉ रोड बोबुआ सेंट पियर में 70 साल के 70 years old के श्री गिरधारी बतू जो बाई गुलित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी देवी भतू के मकान रॉ रोड बोबुआ सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। फ्लैट सी थर्टीन एनएचडीसी कप मालोरो में 33 साल की 33 years old की श्रीमती कृति भुनमुन पैदाशी नाम मोहन और जो पूजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सपहर 3 बजे उनकी मां प्रतिमा मोहन के मकान फ्लैट C13 NHDC कप मालोरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोएटो पीमों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: Well guys, welcome in the third hour of this beautiful show. और ये है आपका अपना रफ्तार वाइब्स यो फिल्मी हियर राइट्स विद मेगनिशा ऑन रेडियो मस्ती. 6:28 हो चुके हैं. टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली. जो घर पहुंच चुके हैं आप आराम से बस हमारा साथ यूं ही देते रहना विद सम गुड म्यूजिक. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार और गनीशा का प्रणाम.
1: RN2 रेडियो मस्ती.

I really hope that you guys are really loving these beautiful and lovely गानों का selections. जी हाँ, जो specially आपके लिए हम निकाल के लेके आते हैं. तो 5499194 पर बहुत आपके प्यारे प्यारे दिल की बात यानी कि messages आप हमें लिख के भेज रहे हो. तो ये अगला गाना संगीता के लिए और उनके परिवार वालों के लिए जो मोटाई ब्लाउश के रहने वाले हैं और जितने भी लोग हमें सुन

0: ही है फ्रॉम मोंटेल ब्लांश, दिस वन गोज आउट टू यू। एंड राधा जी हेलो, कैसे हो कनाडा से? एंड वो बोलते हैं ब्यूटीफुल फैमिली के लिए जो कनाडा में है, मॉरिशस में है, हमारे लिए लिसनर्स के नाम, सब के नाम अगला गाना, और स्पेशली हमारी तरफ से आपके नाम। हे माई स्वीट मीठे गिनी, कैसे हो मेरी प्यारी मालिनी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया जी। एंड विशिंग द टीम अ लवली इवनिंग, थैंक यू सो मच। एंड टू ऑल दोस हु आर गेटिंग रेडी टू हैव देयर डिनर, उनकी तरफ से बोन अपेटी। एंड here we go, hey gini, nice playlist, thank you so much. To chaliye ji, the next one aapke boyfriend Vikash ke liye, that's coming from Aisha. Thank you so much Aisha, ye agla gana for you. And we have agla gana for Karishma, Miss Karishma jo saath de rahi hai. And to all those who are listening to me right now and cooking in the kitchen, courage to you. And to all those jo abhi kaam pe hai, courage to you as well my dear.
1: RM2 Radio Masti.

6:55 मिनट हो चुके हैं और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू. इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे. हाँ जी, आपके इस खूबसूरत से शो में योर रफ्तार वाइब्स. तब तक के लिए थोड़ी देर में आ जाएगी हमारी प्यारी दिव्या जी साथ देने के लिए इन योर इवनिंग लाउंज.

0: वेल शाम के 7:07 हो चुके हैं, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, इसलिए प्यार आपने किया है तो इसको ज़रूर आपको दुनिया को दिखाना है और दुनिया के सामने जताना भी है। और कहते हैं ना कि प्यार किया है चोरी चोरी, लेकिन चोरी चोरी अगर आप इसको मन में रखेंगे तो जिससे आप प्यार करते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है। इसलिए कभी कभार जब फीलिंग्स सामने उभर कर आते हैं तो इसको एक्सप्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सिचुएशन में हम सामने आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए, आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि प्यार है तो जताना भी पड़ेगा। सो चलिए, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, और यही एहसास लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज शाम दुनिया को बता ही दीजिए कि आपको किससे प्यार है, और हमारे गीतों को सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उस स्पेशल इंसान से, ज़रूर हम जानना चाहते हैं ऑन 5499-1294। सो चलिए, दिव्या का साथ है टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज। कुछ प्यार भरी बातें, कुछ प्यार भरे गाने आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, और हम यहाँ पर हैं आप लोगों के दिल का हाल सुनने के लिए और कुछ दिल का हाल सुनाने के लिए भी। ऑन द मैजिक नंबर हमने तो बता दिया है, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

0: इससे आगे अब मैं क्या कहूँ, ऐसा वाला सिचुएशन हमेशा आ ही जाता है जहाँ पर प्यार होता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या कहें और कैसे कहें, और जुबान पे लफ्ज़ आते भी हैं लेकिन अटक जाते हैं, है ना। मुझे पता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन तभी आता है जब आपको बेइंतहा मोहब्बत होता है और अल्फाज इतने कम पड़ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि दामन में समेटना प्यार को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे हम कह रहे थे शुरुआत में, अगर प्यार किया तो डरना क्या, बस खुल्लम खुला इसका इजहार कीजिए। एंड डू नॉट वरी अबाउट रिजेक्शन, डू नॉट वरी अबाउट जजमेंट, एंड डू नॉट वरी अबाउट कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे क्या कहने वाले हैं। जो मन में है वो बस एक्सप्रेस कर दीजिए एंड आप हल्का फील करेंगे, बिलीव मी। और इससे क्या पता आपकी लव स्टोरी शुरू हो जाए, एंड हम तो चाहते ही हैं आपकी प्यार, आपका आपकी जो प्रेम कहानी है वो शुरू हो जाए। एंड चलिए, प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो उतने ही प्यार से आप यहाँ तक अपनी कहानी को बयां कर रही हैं ऑन 5499 1294। दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

फॉर दोज जो अभी ड्राइव करके घर वापस जा रही हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप बहुत ही आराम से इत्मीनान से गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। एंड 8:40 हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग इस वक्त फैमिली के साथ बैठे हुए हैं कुछ डिनर लेने के लिए, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा एक तरफ रखें, इससे कम्युनिकेशन और बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होता है।

0: चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ खूबसूरत मैसेजेस की ओर जो आपने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं. एंड चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम ख़ास तौर से दरकेज करेंगे. आपके नाम कहते हैं, नमस्ते दिव्या जी, मैं किशन हूँ, एक गीत की फरमाइश करना चाहता हूँ और शिमशा के लिए. शिमशा, ओके. एंड गीत है तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे. एंड थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए. पॉसिबल हुआ तो हम इस गाने को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. कुछ ऐसे गाने हम चलाते हैं जो शो में फिट होता है और कभी कभी जो गाने फिट नहीं होते हैं हम इसको नहीं चलाते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पर गिरीश हरलोल कनेक्टेड है हमारे साथ. नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू, दिल का क्या कसूर वाला एक गाना आपको सुनना है. एंड साथ में वी हैव कौन हमारे साथ, कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी. टू विश माई हस्बैंड आतिश हैप्पीएस्ट बर्थडे एंड दैट माई सेल्फ आशना एंड हीज सॉन कार्तिक लव हिम लोड्स. तो चलिए आपके प्यारे से पतिदेव आतिश को हमारी तरफ से भी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड गुड विशेज फ्रॉम द होल RM2 टीम. एंड जितने भी सारे लोग आज अपना स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी आपकी खुशी में शामिल होकर आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: कभी ऐसा होता है ना कि आप अकेले में तन्हाई में बैठे होते हैं और अचानक से धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देने लगता है। वो कुछ नहीं है, बस आपकी यादें हैं जो सामने उभर कर आती हैं। कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में इतनी बुरी यादें होती हैं कि उसको हम भुला देने पर भी भुला नहीं पाते हैं, और जब ये सामने आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी खूबसूरत यादों को याद करें, ताकि हम बुरी यादों को एक कोने में रख कर इसको कहीं पर भुला दे। ऐसा भी होता है, इसीलिए तो हमेशा हम कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज, ताकि बाद में जब कभी भी ऐसा होना कि बुरी यादें सामने आ जाए तो आप उन खूबसूरत लम्हों को याद करके थोड़ा सा मुस्कुराए और जो नेगेटिविटी है उसको एक साइड रखें। चलिए, इट्स ऑलरेडी 7:52 एंड दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। तन्हाई में बैठे हुए हैं, बस चांद तारों को निहारते निहारते ठंडी ठंडी हवाएं आपके चेहरे पर आना और साथ में हमारे गीतों के साथ गाते गुनगुनाना, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और लोग हमेशा इसी वक्त का इंतज़ार करते हैं जहां पर आप घर वापस आते हैं, अपनों के साथ मिलकर कुछ आपस की प्यार भरी बातें करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते हैं। दिस इज़ द मोमेंट जो सब लोग दिन भर वेट करते हैं, तो डू नॉट स्पॉइल इट। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मोबाइल को एक तरफ रखिए और बस इस मोमेंट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: घर मिलाते चलिए रात्रि के 8 बज चुके हैं.
0: Evening lounge.
4: RM2
0: Radio Musti.
5: Well, पहुंच चुके हैं इन द सेकेंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज, जहां पर एक बार फिर से दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जो वक्त निकाल कर हमें याद कर रही हैं. Well, ये गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर मिस्टर विशम गंगादीन. इस वक्त डिनर तैयार कर रहे हैं. ये बहुत ही रेयरली सुनने को मिलता है कि कोई जेंटलमैन किचन में बिजी हैं और खाना बना रहा है. सो हैट्स ऑफ टू यू विशम एंड बोन कुराज इन द किचन. एंड आई एम श्योर कि आप खाना बना रही हैं तो इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा स्पेशल. और आपको एडवांस में बना पीछे

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: अरिजीत सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा ये गाना, हमेशा हम कहते हैं ना, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं ना। आई गेस ये गाना सुनने के बाद आप बहुत ही हल्का महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आप बस प्यार को और मैजिक को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब क्या ही करें, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो मैजिकल ही होते हैं। इश्क का प्यार इतना गहरा होता है कि बाकी सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि इश्क का रंग जब आप पे चढ़ जाता है तो ये उतरने से भी नहीं उतरता है। और हम तो यही चाहते हैं कि प्यार का ये रंग आप पर उतर कर, आप पर चढ़ कर कभी ना उतरे। वेल, प्यार की यही फितरत है कि हमेशा प्यार से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आते हैं जिनकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। प्यार सच्चा है, प्यार अच्छा है तो हमेशा पॉजिटिव चेंजेस लेकर ही आते हैं। तो चलिए एक बार फिर से, लेट्स एक्सपीरियंस लव एंड मैजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।

तू जो जान ले दिल को करार आए। क्या जानना है, बस यही जानना है कि तुझसे कितना प्यार है। जान के पहचान के बस प्यार का इजहार ही करना है। Well, we have this beautiful गाना सोनू निगम की आवाज़ में, एंड ये गाना हम ज़रूर दरकेज करना चाहेंगे, especially for शालिनी एंड कोविल। Congratulations to both of you on their beautiful baby girl Kiana, and sending all best wishes to them. Thank you so much. आपने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं। Once again, शालिनी एंड कोविल को मिनी मिनी congratulations for your little princess. And यहाँ पर रोशनी, thank you so much. आप कहती हैं कि thanks for मेरा नाम इश्क, it's one of my favorites. आपको भी शुभरात्रि, and thank you once again रोशनी जी। जब आपके appreciation वाले messages आते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम सक्सीड हुए और सफल हुए आपके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी लेकर आने के लिए। सो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बाकी गानों को भी ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। हाय आरजे, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड कहती हैं कि कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग सारी फ्रॉम धमाल फॉर पृथ्वीराज, विजया, अर्जुन एंड अर्चना। अभी के लिए तो ये गाना शायद हमारे शो के लिए फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट्स अ रोमांटिक शो जहाँ पर हम बस कुछ कूल म्यूजिक ही चलाते हैं आप लोगों के लिए। एंड विल ट्राई टू पुट इन फिट द गाना इन टुमोरोज शो, जहाँ पर हम फ्राइडे मूड के साथ एकदम धमाकेदार गाने लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए, एंड टू ऑल दोज जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, चाहे आप मॉरिशस में हैं या फिर सात समुंदर पार। वंस अगेन दिल से आपको शुक्रिया।

0: वेल चांद की नजर आ जाने के बाद उसका दीदार करने के बाद शायद आपको किसी की याद आ गई हो. और वैसे कमाल की बात है ना, ये कुदरत के का करिश्मा ही है. जहाँ पर आप इधर चांद देख रहे हैं तो उधर वो भी चांद देख रहा होगा या फिर देख रही होगी जिनसे आप प्यार करते हैं. और बस यही चांद तारे हैं जो आपको एक साथ कनेक्ट करता है. इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुदरत के इन करिश्मों को बहुत ही प्यार से सराहें, बिकॉज इनसे आप चाहे माने या ना माने, दे हैव अ कनेक्शन विद ह्यूमन बींग्स. तो चलिए यहाँ पर हमारा और आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं. थैंक यू सो मच. हम भी एफर्ट डाल रहे हैं, खूबसूरत गीत सुना रहे हैं आप लोगों को. तो अभी अपनी तरफ से कुछ स्टेप बढ़ा रहे हैं आगे टू मेक दिस बॉन्ड मोर ब्यूटिफुल एंड मोर स्ट्रॉन्ग. एंड श्वेता हुकुम आप है बनाकर से नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर योर बिलवड हबी रोशन फ्रॉम wife Rani from Bubu Rani, and I just want to tell him that you love your husband so much. Thank you so much Shweta is a khubsurat message ke liye. And we also have Geeta Sita Bulurama of Chateau Benares jo is waqt connected hai hamare sath. Chaliye kuch aur khubsurat geeton ke sath aapko hum entertain karte rahenge till 9 pm. Ghar wapas pahunch gaye honge thake hare, shayad aapka night shift tha aur maybe aapka overtime aur aap ghar abhi पहुंचे हैं. सो बस सिट बैक रिलैक्स और खूबसूरत गीतों का कारवा आप ऐसे ही एंजॉय करते रहें. एंड अगर आपका नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुआ है तो चलिए काम पर हैं. वो कुहाज आपको
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए आप जीना सीख लीजिए। कभी प्यार में हम खुद को भुला देते हैं, लेकिन प्यार में खुद को याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्यार में किसी को पा सकते हैं, लेकिन प्यार में खुद को खोना लाजमी बिल्कुल नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी किसी को प्यार होता है, यू डू नॉट नीड टू फॉल इन लव, यू नीड टू राइज इन लव। ऑलरेडी 8:58, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर योर फ्राइडे इवनिंग, जहाँ पर एक अलग ही वाइब के साथ, एक अलग ही मूड के साथ आएंगे। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि।

हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। ऐसा लग रहा है कल ही मिले थे ना? डेफिनेटली कल ही तो मिले थे, और देखिए आज वापस नीतू आपके साथ। गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तो चलिए, वंस अगेन आपको तो पता ही है, अभी से लेकर रात्रि के 12 बजे तक 3 घंटे भाई हम और आप इन गानों के साथ। तो चलिए, व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल अटून्ड, इट्स योर लेट नाइट।

Let's continue with all the good vibes, music, बातें अच्छी अच्छी बातें हैं अच्छे लोगों के लिए. So Bollywood music सिर्फ गाने नहीं हैं. अगर आप सुन रहे हैं thank you. बल्कि हमारी जिंदगी का soundtrack है. बचपन की यादें हो, पहला पहला प्यार, दोस्ती की मस्ती हो या फिर जुदाई का दर्द. हर एहसास के लिए एक बॉलीवुड गीत तो जरूर मिलता ही है. शायद इसीलिए लोग बॉलीवुड म्यूजिक से इतना प्यार करते हैं क्योंकि ये सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंचता है. जब शब्दों का साथ मधुर धुनों से मिलता है ना, तब हर गीत एक खूबसूरत कहानी बन जाता है जो हमें जीना, मुस्कुराना और हर लम्हे को महसूस कराना सिखाता है.

म्यूजिक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर जनरेशन को एक साथ जोड़ देता है। दादा दादी के जमाने के गीत हो या आज के नई मेलोडीज, हर दौर का अपना एक अलग रंग है। ये गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, दैट्स ट्रू, और पुरानी यादों को तो फिर से जिंदा कर ही देते हैं। इसलिए बॉलीवुड म्यूजिक हर घर का एक अहम हिस्सा बन चुका है।

वैसे आप ही तो हमारे दिल के हिस्से बन ही चुके हैं. थैंक यू वंस अगेन. कभी सोचा है कि उदासी के पलों में हम अक्सर म्यूजिक ही क्यों सुनते हैं? क्योंकि संगीत में वो ताकत होती है जो दिल का बोझ हल्का कर देती है. एक मधुर बॉलीवुड गीत थके हुए मन को सुकून देता है, आंखों में उम्मीद जगाता है और हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद क्या होता है, एक नई सुबह जरूर आती है.

इंतजार का फल मीठा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। सबूरी का फल मीठा होता है, तो बस ये गाने भी इतने ही मीठे मीठे हैं, जो दिल के अरमानों को यहाँ पर कुचला नहीं रहे हैं, बल्कि और उम्मीद बढ़ा रहे हैं।

बॉलीवुड म्यूजिक इमोशंस की दुनिया है। इसमें मोहब्बत की मिठास है, दोस्ती की गर्माहट है, माँ की ममता और देशभक्ति का जज्बा भी। इसी वजह से हर गीत किसी न किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। जब हम अपनी कहानी किसी गीत में ढूंढ लेते हैं, तब वो गीत हमेशा के लिए हमारा अपना बन जाता है।

बॉलीवुड के संगीत ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान दी। मॉरिशस से लेकर लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, बाप कहां कहां तक जाएंगे, हिंदी फिल्मों के गीत लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। भाषा अलग हो सकती है लेकिन सुर और जज्बात सबको एक ही दौर में बांध देते हैं।

यू सो मच हमारे म्यूजिकल हमसफर बनने के लिए. नेक्स्ट सॉन्ग आपके नाम है दोस्त. जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त इस समय रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे जब जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है तब एक सुकून भरा बॉलीवुड मेलोडी हमें कुछ पल के लिए रुकना सिखा देती है. ये गाने हमें अपने अंदर झांकने, अपनी यादों से मिलने और खुद को फिर से पहचानने का मौका देते हैं. Have you ever tried?

बॉलीवुड गीत की बात चल पड़ी है तो हम वापस इन द 60s, 70s, 80s, 90s की दुनिया में चल पड़े। हाँ जी, बॉलीवुड म्यूजिक का सफर भी कमाल का है ना। पुराने दौर की मधुर धुने, कैसेट का जमाना, सीडीज, MP3 और आज की बात ही तो अलग है। डिजिटल स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन गीतों का जादू आज भी उतना ही गहरा है। बात सुनो, क्योंकि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता।

गाना हो तो ऐसा दिल को सुकून दिलाने वाला। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे गाने होते हैं जो उसके दिल के बहुत करीब होते हैं। उन गीतों को सुनते ही पुरानी यादें, हंसी के पल और अपनों की बातें फिर से ताजा हो जाती हैं। इसलिए बॉलीवुड म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि यादों का एक पिटारा, शुड आई से अनमोल खजाना होता है।

साइंस भी मानता है भाई कि म्यूजिक स्ट्रेस को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम अपना पसंदीदा बॉलीवुड गाना सुनते हैं तब मन को सुकून मिलता है, अंदर ही अंदर खुशी हो जाती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना, और दिन की थकान कुछ देर के लिए दूर हो जाती है। दैट्स व्हाई म्यूजिक को कई लोग अपना इमोशनल कंपेनियन मानते हैं। आप भी? थैंक यू।

बॉलीवुड के गीत वाह हमें सपना देखना सिखाते हैं, कभी हौसला बढ़ाते हैं, कभी टूटे हुए दिल को संभालते हैं और कभी एक नई शुरुआत की हिम्मत देते हैं। हर गीत में जिंदगी का कोई ना कोई पैगाम जरूर छुपा होता है।

in the last hour of this late night grooves. वैसे दोस्त मोहब्बत की बात हो और बॉलीवुड म्यूजिक का जिक्र न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन गीतों ने प्यार को अल्फाजों और सुरों का सबसे खूबसूरत रूप दिया है।

म्यूजिक की असली खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है ना। क्लासिकल से लेकर फोल्क, गजल, गजल से लेकर कव्वाली, भजन से रॉक और सॉफ्ट मेलोडीज से डांस नंबर्स तक, हर अंदाज अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी वजह से हर सुनने वाले को अपनी पसंद का कुछ न कुछ जरूर मिल

कभी किसी शाम बैठकर अपना फेवरेट बॉलीवुड मेलोडी सुनिए, महसूस होगा जैसे गीत आपसे कुछ बातें कर रहा हो, आपके दर्द को समझ रहा हो और धीरे धीरे हर बोझ को हल्का कर रहा हो। म्यूजिक की यही हीलिंग पावर उसे इतना खास बना देती है, और ये तो हमारी खुशनसीबी है एंड आपकी भी कि हर रोज सुबह शाम हम इन मेलोडीज के साथ जुड़े हुए हैं, गानों के साथ जुड़े हुए हैं।

यस दोस्तों, 3 घंटों का ये सफर लेट नाइट ग्रूव्स खत्म हो चला, लेकिन हाँ, म्यूजिक का सिलसिला खत्म कभी नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। बस आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड म्यूजिक सिर्फ सुर और शब्दों का संगम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत ताकत है। ये हमें हंसाता है, रुलाता है, यादों से मिलाता है, उम्मीद जगाता है और हर दिन को थोड़ा और हसीन बना देता है। इसलिए जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, अपना फेवरेट बॉलीवुड गाना चलाइए, आंखें बंद कीजिए और म्यूजिक को अपनी रूह तक उतरने दीजिए। शायद वही गीत आपके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। टेक केयर, बाय बाय।